सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तनुसार 13 मई सन 2026, सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 6 बजे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया लेके प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर 2 गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले

0: गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ज्ञान ज्योति।

शास्त्र कहते हैं जीव के मन वचन और कर्म में तारतम्यता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन से हम किसी का हृदय दुखाते हैं वो भी कर्म में बंधने वाली बात होती है। वाणी से हम किसी का बुरा बोलते हैं तो वो भी बंधन में बंधने वाला काम होता है, और हाथों से अगर किसी का हम बुरा करते हैं तब भी वो बंधन का कारण बनता है। इसलिए मन वाणी और कर्म में तारतम्यता बहुत ज़रूरी है, जिससे जीव भव से पार हो जाता है। ज्ञान ज्योति।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। वो परम सत्ता ही अनेक रूपों में इस धरा पर अवतर होती है और वही सत्ता सबका कल्याण करती है और उसी को कल्याणकारी सत्ता कहते हैं।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए वंदना करते हैं उस आदि जग जननी की जो अखिल ब्रह्मांड को संचालित करती है, सबका पालन पोषण और दुष्टों का संहार करती है।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से। सिद्धों में सिद्ध महायोगी बाबा बालकनाथ सबका कारण और तारणहार हैं। आइए करते हैं उनकी वंदना।

शास्त्र कहते हैं जब भी ये मन भटकता है, माया के झटके खाता है, तो ये मन ईश्वर भक्ति में लीन करना चाहिए, क्योंकि यही भक्ति जीव को पार करती है।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। समय बताते हैं आपको 6:35 हो चुके हैं और आइए सुनते हैं वंदना कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

शूद्र वंश में जन्मे काकभुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं। उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया, तो शूद्र वंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया। किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है, तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है, जा तू अजगर हो जा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हमारे आज के गायक कलाकार थे ए हरिहरन और साथी संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, उनका प्रसारण समय।

शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचार 6:55 पर। 7 बजे हिंदी समाचार होंगे। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। समाचार प्रभात का अंक आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकेंगे 8 बजे। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़। हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनेंगे 8:30 पर। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से लेके जाएंगे 9:20 पर। 9:30 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे सुनेगा आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 10:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता।

10:15 पर आज आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे। 11:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 12:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। सैनिकों के लिए कार्यक्रम होगा 12:30 पर। दोपहर 1:00 पुणे आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। दो बजकर 30 पर पुणे आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। और 3:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से ले करेंगे। तीन बजकर 10 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। और 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ी बोली में भजन संध्या। 5:30 पर। 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। और 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। 11:00 के लिए कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी सायं 6:30 पर। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली

से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। रौनका गराइंदिया ये कार्यक्रम होगा 7:25 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे 7:45 पर। आठ बजे आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक रिले किया जाएगा और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। आज बुधवार है और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान जगत। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे चांदनी रातें रात्रि 10:30 पर और 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही

0: हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के ठीक 7:05 हुए हैं।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर। कार्यक्रम सुनने वालों को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले हम आपसे साझा करेंगे आज का विचार। आपको इंतज़ार रहता है आज के विचार का, क्योंकि विचार हमें मनोबल देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो कई बार जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और टूटन महसूस करते हैं। तो कहा जाता है पैरों से कांटा निकालने के बाद जो मज़ा चलने में आता है, वही मज़ा मन से अहंकार निकलने बाद जीवन जीने में आता है। जी हाँ, जब छोटा मोटा कोई पूर्वग्रहों से ग्रसित सोच का एक धप्पा हमारे अंदर होता है तो हमें वो एकांगी बना देता है। तो वैसे ही पैरों में जब कांटा चुभा होता है, जब उसे निकाला जाता है तो हमें चलने में बड़ा आनंद आता है। वही जब छोटा सा भी अहंकार हमारे मन में है, उसका थक्का थोड़ा सा हमारे जीवन में लगा हुआ है, तो उसको निकालने के बाद हमें जीवन चलाने में बहुत आनंद आता है। घायल तो यहाँ पर हर

जिंदा है मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। तो कोशिश करते रहना चाहिए हमें, और कभी भी अपने इरादों से डगमग नहीं होना चाहिए, बेशक वो इरादे हमारे सर्व कल्याणकारी हों, सर्व का हित करने वाले हों और पूर्व ग्रहों से ग्रसित ना हों। बस फिर देखिए कुदरत भी हमारा साथ देती है। और विचार के बाद अब सुप्रभात हमीरपुर में ले चलते हैं आपको संगीत की ओर।

0: अभी आपने RRR फिल्म का गीत सुना है। आवाज़ थी शमशाद बेगम और साथियों की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे एक अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है।
4: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
5: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
4: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
5: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

अंतराल के बाद कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में आपका फिर से स्वागत है। अब आपको ले चलते हैं आज के इतिहास के पन्नों की ओर। आज है 13 मई और 13 मई के इतिहास के पन्नों में क्या कुछ दर्ज है, चलिए आपसे साझा करते हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण सन 1648 में पूरा हुआ था और इक्वेडोर गणराज्य की स्थापना 1830 में आज ही के दिन हुई थी। भारत ने 1918 में राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण भी आज ही के दिन किए थे। स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र 1952 में आज के दिन शुरू हुआ था। जॉर्डन और इराक ने 1958 में अरब फेडरेशन की स्थापना भी 13 मई को की थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति भी आज के दिन बने थे। देश का पहला ध्वजवाहक जहाज 1978 में INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ था। चीन में लगभग 2000 छात्रों ने थियान अनमन चौक, इस पर भूख हड़ताल 1999 में शुरू की थी। भारत ने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण 1998 में किए थे आज ही के दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में परमाणु परीक्षण के विरोध में भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की घोषणा भी आज ही के दिन की थी। जापान ने 1958 में भारत को दी जाने वाली सहायता पर रोक भी आज के दिन लगाई थी और जापानी छात्र के नागुई 1999 में विश्व की 7 सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम 25 वर्षीय पर्वतारोही बना था आज ही के दिन। आपको बता दें मिस इंडिया लारा दत्ता सन 2002 में सरप्राइज में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब ही उन्होंने आज के दिन जीता था। रियाद में सन 2003 को आत्मघाती हमलों में 29 व्यक्ति मारे गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सभी 9 मंत्रियों ने जजों की बहाली के मुद्दे पर इस्तीफा सन 2008 में आज के दिन दिया था। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को सन 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित भी 13 मई को किया गया था। और जिन महान हस्तियों का जन्म आज हुआ वो कौन कौन सी हैं, 13 मई को कौन कौन जन्मा था? स्वतंत्रता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र वैद्य का जन्म भी 1901 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 1905 में आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता आसित सेन का जन्म 1917 में आज ही के दिन हुआ था। भारत नाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का जन्म 1918 में आज

के दिन हुआ। अमेरिकी हास्य अभिनेत्री मॉड एंड गोल्डन गर्ल्स आर्थर का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ। मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के राजनेता कैलाश विजयवर्गीय का जन्म 1956 में आज ही के दिन हुआ था। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना करने वाले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का जन्म 1956 में आज ही के दिन हुआ था। और जिन महान हस्तियों का निधन आज के दिन हुआ उनमें सबसे पहले मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ मलिक अंबर का निधन 1626 में आज ही के दिन हुआ। लखनऊ के प्रसिद्ध शायर हसरत मोहानी का निधन 1951 में आज ही के दिन हुआ। अंग्रेजी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक आर के नारायण का निधन सन 2001 में आज ही के दिन हुआ था, यानी कि 13 मई को हुआ था। इसके अलावा भारतीय चिकित्सक हेमलता गुप्ता का निधन भी सन 2006 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और इस सबके अतिरिक्त रंगमंच के सिद्धांतकार बादल सरकार का निधन सन 2011 में आज ही के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह का निधन भी 13 मई को सन 2016 में आज के दिन हुआ था।

0: दो उस्ताद, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ थी आशा भोंसले की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
5: सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अंतराल के बाद सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आपको थोड़े से टिप्स और साझा करते हैं। कई बार हमें काम का बोझ होता है, कुछ पर्याप्त हम नींद नहीं ले पाते, ऐसे में तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो तनाव करने के लिए, उसको तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास, योग, ध्यान, नियमित हम शारीरिक व्यायाम करें, जैसे हम टहलें, सुबह की सैर करें। इसके अलावा पौष्टिक आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए टिप्स के बाद पुनः आपके लिए चलते हैं संगीत की ओर।

0: धूल का फूल। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ थी सुधा मल्होत्रा की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: बड़ी बहू,
5: ये तुम्हारी ना,
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना,
4: और ये मेरी गुड़िया की ना।
6: पर दादी, आपके नाम?
7: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट,

3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद मंगलवार को इसे रद्द कर दिया है। सरकार ने मामले की व्यापक जांच सीबीआई को सौंप दी है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से भड़के विद्यार्थियों ने देश भर में जगह जगह प्रदर्शन भी किया, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी भी की, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। और अगली सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एक उचित नीतिगत ढांचे की कमी को रेखांकित करते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई बच्चों के लिए अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। असम में डॉक्टर हिम्मत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्य में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यह लगातार तीसरी सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सहायता करने वाले पर भारत ने चीन को आत्मचिंतन की नसीहत दी है। पिछले साल मई में भारत व पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को चीन की मदद मिलने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो राष्ट्र आतंकियों का बचाव कर रहे हैं उन्हें योजना बनाकर सोचना चाहिए कि ऐसा करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है या नहीं। पंजाब के मोहाली स्थित सतर्कता कार्यालय में सोमवार देर रात छापे और नाटकीय घटनाक्रम के बाद सीबीआई ने 13 लाख रुपए की रिश्वत मामले में 2 बिचौलियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार मामला पंजाब सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते ऊर्जा संसाधनों में कमी और बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए कम से कम 40 देशों ने नीतियां लागू की हैं। इनमें ईरान के इस संकट को देखते हुए निधन राशनिंग यानी ईंधन का समय से पहले इस्तेमाल और संयम से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वाहनों की आवाजाही घटाने, गैर सरकारी यात्राएँ सीमित करने, वर्क फ्रॉम होम करने जैसे उपाय लागू किए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुए इस हालात से निपटने के लिए इन देशों ने सरकारी यात्राएं सीमित की, वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग जैसे आपातकालीन कदम जो हैं उठाए हैं। समय से पहले आ सकता है मॉनसून, 25 से 27 तक केरल पहुंचने के आसार। देश में मॉनसून तय समय के 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल में मॉनसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक सिस्टम बन गया है जो अगले 48 घंटों में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश बढ़ेगी। यह सिस्टम मॉनसून को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार सुबह पश्चिमी यूपी के करीब 10 जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। धूल भरी आंधी और अंधड़ भी चली।

0: बारिश फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और साथियों की। सुप्रभात, हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे एक अंतराल के बाद।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अंतराल के बाद सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में लिए चलते हैं आपको आज की ताज़ा तरीन खेल खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को रनों से भरा हुआ माना जाता है, पर मंगलवार रात को सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज ने इस पिच पर मेजबान गुजरात टाइटंस के लिए एक एक रन

बनाया और उसे बड़ा मुश्किल हो रहा था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही गुजरात की टीम को हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन पर ही रोक दिया। हैदराबाद के लिए खास तौर पर फिर से प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन की जोड़ी चमकी, जिन्होंने 5 में से 4 विकेट आपस में बांट लिए। गुजरात के लिए यदि ओपनिंग बल्लेबाज साई सुदर्शन और मध्याक्रम के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने 50 प्लस स्कोर नहीं बनाए होते तो टीम 150 रन के पार नहीं जा पाती। मुक्केबाज संघ की चयन नीति रद्द, ट्रायल आय से राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए मुक्केबाजी टीम के चयन का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन भारतीय मुक्केबाजी महासंघ अपनी चयन नीति पर मुसीबत में फंस गया है। साई ने BFI में चयन नीति में खामियों पर जवाब मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वहीं बुधवार से पटियाला में शुरू हो रहे ट्रायल में चीफ आर्मी स्टाफ कप में खेलने वाले 40 मुक्केबाजों में से कोई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। फीफा विश्व कप के लिए शुरुआती 35 से 55 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा होने लगी है। मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने अपने संभावित दिग्गज स्टार लियोनेल मेसी को जगह दी है, जिनका यह आखिरी विश्व कप माना जा रहा है। इसी तरह ब्राजील ने भी संभावितों में नेवार को शामिल किया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी 48 टीमों को 3 गोलकीपर समेत अपने 26 खिलाड़ियों को फाइनल टीम में 1 जून तक शामिल करना निश्चित किया गया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के साथ जो है वापसी को लेकर चल रहे विवाद में विनेश फोगाट का समर्थन करते हुए कहा, दुनिया में मां बनने के बाद महिलाओं को वापसी के लिए नियमों में ढील दी जा रही है। वहीं विनेश की या राह रोकने की कोशिश हो रही है। साक्षी ने कहा, 2-3 दिनों से सोच रही थी क्योंकि विनेश एक राजनीतिक दल की विधायक हैं और मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संघर्ष या संबंध नहीं है। इसके बावजूद मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ जहाँ देशों ने अपने खिलाड़ियों के लिए नियमों में ढील दी ताकि महिलाएं मां बनने के बाद भी खेल सकें और देश के लिए पदक जीत सकें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पैरालंपियन विनोद कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। विनोद ने टोक्यो में कांस्य जीता जो बाद में वापस ले लिया गया था और 4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मांगी थी। दक्षिण अफ्रीकी पेसर शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास वापस ले लिया है। 37 वर्षीय शबनम को महिला T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। ये थी आज की ताजा तरीन खेल खबरों की सुर्खियां जो हमने आपसे साझा की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। सुबह के 7:47 और 10 सेकंड हो चुके हैं। अब आपको फिर से ले चलते हैं संगीत की ओर।

0: भाई भाई फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। मिलते हैं आपसे एक अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अंतराल के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म है आशा और आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: इसी के साथ सुप्रभात, हमीरपुर कार्यक्रम में ही समाप्त है। संजय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात का अंक, और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी

0: अंशुक मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों

0: की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर-17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
4: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
3: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office in secrecy to Mr. Rangasamy. More

नमस्कार, अब अंक विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने आचार व्यवहार, पहनावे और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी कार्यालय और अदालतों में मर्यादित औपचारिक और सादे रंगों के कपड़े पहने, कैजुअल और पार्टी ड्रेस को पूरी तरह से अनुचित माना गया है। सर्कुलर में कहा गया कि सरकारी सेवकों का आचरण केवल कार्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियां भी सेवा नियमों के दायरे में आएंगी। किसी भी सरकारी नीति या मुद्दे पर अनधिकृत टिप्पणी, पोस्ट, स्टोरी या ब्लॉग साझा करना अनुशासनहीनता माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर नियोजन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों के कार्यान्वयन में अतिरिक्त देरी और अवैध निर्माणों पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने और न्यायाधीश बिपिन चंद्र योगी ने 13 जनवरी 2023 से लंबित आदेशों का पालन न होने पर नाराजगी जताते हुए नगर नियोजन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने चिट्टा और अन्य एनडीपीएस मामलों में संलिप्त कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब चिट्टा बेचने वाले अधिकारी और कर्मचारी बर्खास्त होंगे और सेवन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने प्रवेश परीक्षा के सभी विषयों की उत्तर कुंजी जारी की है। यूनिवर्सिटी ने 9 और 10 मई को बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए, एमसीए सहित कई अन्य विषयों की प्रवेश परीक्षा ली थी। सभी विषयों की प्रवेश परीक्षा में 8,584 अभ्यर्थी बैठे थे। किसी भी अभ्यर्थी का उत्तर कुंजी को लेकर कोई त्रुटि, सुधार या सुझाव है तो वह 20 मई तक ईमेल या पत्राचार के माध्यम से यूनिवर्सिटी को सूचित कर सकते हैं।

साई कांगू और धनपुर में रखी गई लकड़ी की नीलामी 21 मई को सुबह 11:30 बजे वन रेंज कार्यालय नदौन में की जाएगी। इस प्रकार वन रेंज कार्यालय बड़सर, वन रक्षक हट घुनानी पनियाली, बीओ आवास परिसर बुम्बलू और सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिप्पर के परिसर में रखी

पिंड 101.8 MHz पर 8:35 हुए हैं। अब से लेकर 9:20 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की सलाम नमस्ते फिल्म के इस गीत के साथ। कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं रेड 2 फिल्म से जुबीन नौटियाल का गाया गीत, मनोज मुंतशिर पूर्णम अलाहाबादी नुसरत फतेह अली खान का लिखा गीत, रोचक कोहली नुसरत फतेह अली खान संगीतकार हैं।

दम लगा के हईशा इस फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गीत। वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा।

0: आवाजों में आपने ये गीत सुना और अब सुनिए एक संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जावेद अख्तर का लिखा, शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजा, सोनू निगम अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।

कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कभी अलविदा ना कहना फिल्म से। सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं।

सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास का गाया गीत कभी अलविदा ना कहना फिल्म से अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलवाले फिल्म से अगला गीत, अमित मिश्रा, अनुष्का मंजंदा, अंतरा मित्रा का गाया गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और धुन बनाई है प्रीतम ने।

ये गीत था फिल्म दिलवाले से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज ने। नीलेश मिश्रा का लिखा गीत है, धुन इस बार फिर से प्रीतम की बनाई हुई, और फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जिगर का ही संगीत है।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनुवेट्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

0: लव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना, जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, नीट परीक्षा पेपर लीक मामला, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज, दूरदराज क्षेत्रों तक चुनाव तैयारियां जोरों पर। वेतन में देरी और लंबित देनदारियों को लेकर एचआरटीसी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सुबह 10 बजे से प्रदेश भर में थमेंगे बसों के पहिए। और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने शिमला में किया निरीक्षण, निष्पक्ष पारदर्शी और सुचारू चुनाव के लिए दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मेहनत पर आघात बताते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति से करवाने की मांग की है। अनुराग शर्मा ने कहा है कि देश भर में करीब 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 32,000 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक घर से दूर रहकर कर्ज लेकर और दिन रात मेहनत कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है, जिसकी वजह से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
1: जो हमारे छात्रों के साथ भारतवर्ष में इतना बड़ा जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो हमारे विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके लगभग 2 सालों से 3 सालों से घर से दूर रह के कैसे पढ़ाई करके नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। नीट का एग्जाम होता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आज उसको दुर्भाग्यवश पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार चल रही है, ये केंद्र में कैसी सरकार है। और मैं तो सीधा हमला भाजपा सरकार पे करता हूँ कि ये जो एक विद्यार्थियों के साथ एक घिनौना कार्य किस लिए हुआ, इसके पीछे कौन दोषी है। आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत वर्ष में लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट का एग्जाम दिया था, हिमाचल प्रदेश में ये संख्या 32,000 के लगभग है। एक बहुत मेहनत होती है विद्यार्थियों की, उनके परिवार की, जो हमने भी देखे हैं, बच्चे लगभग 20 घंटे पढ़ाई करते हैं और उनके जीवन का एक सपना होता है कि नीट क्वालिफाई करना है।
0: पंचायती राज चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, वहीं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों तक इन चुनावों को संपन्न करवाने की तैयारियां भी जोरों पर है। चंबा जिला में इस बार करीब 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, जिसके लिए जिले में 1020 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र चस्क भटोरी जिला का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। वहीं जिले में 7 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिसमें भटियात विकास खंड की 109 वर्षीय आशा देवी सर्वाधिक उम्रदराज मतदाता है। जिले में इस बार 1,741 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल्लू में नगर परिषद चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। नगर परिषद अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित है, जिसके चलते महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि अनारक्षित वार्डों से भी चुनाव मैदान में है तथा पुरुष उम्मीदवारों को सीधी टक्कर दे रही है। नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में 27 महिला उम्मीदवार मैदान में है। मंडी नगर निगम चुनावों में प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की जनता के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। चुनाव प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस सरकार ने मंडी के विकास को ठप्प करने का अभियान शुरू कर दिया था।
2: नगर निगम मंडी में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं होने दिया। जो पैसा दिया था 15 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए, वो पैसा भी वापिस ले लिया। और मंडी नगर निगम की बात तो छोड़िए, पूरे मंडी जिला को पूरी तरह से विकास के रास्ते से हटा दिया है, नक्शे से हटा दिया है ऐसा लगता है। और इसलिए यहाँ बहुत बड़ा गुस्सा है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ।
0: नगर निगम मंडी में भाजपा व

कांग्रेस दोनों दल प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस के नगर निगम चुनाव प्रभारी व कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव अभियान के दौरान भाजपा शासित नगर निगम पर पिछले 5 वर्षों में मंडी की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासनकाल में शहर की जनता को पानी, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी में 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा शहर को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पाई। उन्होंने भरोसा जताया कि शहर के चहुंमुखी विकास के लिए जनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अभी तक वेतन न मिलने के चलते आज सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि परिवहन निगम कर्मियों को हर महीने देरी से वेतन मिल रहा है और 12 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक प्रदेश में 12,000 से अधिक एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की लंबित देनदारियां और मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि जब तक वेतन कर्मचारियों के खातों में नहीं आता, प्रदेश में आज से बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधु ने कल शिमला के शोघी स्थित एक मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं समेत आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित हो ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाए। राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित JBT भर्ती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 मई से आरंभ होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। वहीं राज्य चयन आयोग ने हाल ही में संपन्न सहायक स्टाफ नर्स पदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों से 15 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के आवंटन के विकल्प आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ये प्रपत्र आयोग के कार्यालय में अथवा ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे देश में स्वास्थ्य व योग क्रिया को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 100 दिन निशुल्क लाइव योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों के क्रम में ऑनलाइन योग को बड़े पैमाने पर आयोजित कर प्रस्तावित 27 मई को विश्व रिकॉर्ड बनाना है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रतिभागी 14 दिवसीय संचरित योग कार्यक्रमों में से विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं। ये सत्र आयुष मंत्रालय द्वारा अपने YouTube चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, वृद्धावस्था पेंशन फर्जीवाड़े में FIR, 44 लोगों के साथ अफसर भी जांच के घेरे में। हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का 4 दिनों के अंदर होगा भुगतान। पंजाब केसरी की एक खबर है, 42 दिन बाद मनाली लेह मार्ग बहाल, जल्द शुरू होगी वाहनों की आवाजाही। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है, किसी कर्मचारी को निलंबित करने से पूर्व नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं। दैनिक जागरण की एक खबर है, शाहपुर में करोड़ों की लागत से बन रहा पुल गिरा। आयुष्मान को केंद्र से आए 50 करोड़, खर्चा हो गया 155 करोड़। शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का फंडिंग फार्मूला अन्य राज्यों की तरह हिमाचल पर भी पड़ रहा भारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग।

0: पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज, दूरदराज क्षेत्रों तक चुनाव तैयारियां जोरों पर। वेतन में देरी और लंबी देनदारियों को लेकर एचआरटीसी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सुबह 10 बजे से प्रदेश भर में थमेंगे बसों के पहिए। और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने शिमला में किया निरीक्षण। निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू चुनाव के लिए दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 9:30 हुए आपसे लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
3: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैं आपसे आज के फनकार कार्यक्रम में मिला और ये बिछड़ने की बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो हैं आज के फनकार, उनकी आवाज के जरिए कोई ना कोई बात तो आप तक पहुँचानी है सरकार।

हाँ, हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। शायर ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूँ या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूँ, ये आपको बताने आया हूँ। तो पहले जरा ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस फनकार की बातें हो रही हैं। इनकी आवाज जाने माने पार्श्व गायक मुकेश से मिलती जुलती थी, इसका इनके करियर पर भी काफी असर पड़ा। मुकेश ने इनको काफी आगे भी बढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने अपना एक पक्का और मुकम्मल रास्ता तय किया।

दोस्तों, मनहर उदास जानी मानी गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं। दरअसल एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उदास, उसके बाद आए पंकज उदास और फिर निर्मल उदास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उदास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम तब तक नहीं ली थी जब तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की, बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में वो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास बैठा करते, उनके स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग देखा करते और सीखा करते। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्म विश्वास का ये गाना मिला।

इस कहानी के बाद भी मनहर उदास का सफर आसान नहीं रहा। ये वो दौर था जब मुकेश फिल्म संसार में मौजूद थे। मुकेश के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मनहर उदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शोज करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवाकर नए गानों की तलाश में रहते। एक बार मनहर उदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेशा आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं। मनहर ने लता जी के साथ एक लाइव शो में श्रोताओं के सामने गाया और उसके बाद फिल्म अभिमान का एक गाना उन्हें मिला। लता जी ने एसडी बर्मन से आग्रह किया कि उन दिनों बन रही फिल्म अभिमान में मनहर से कोई गीत गवाया जाए। सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।

शुरुआत में मनहर पर ये इल्जाम लगे कि उनकी आवाज मुकेश से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर उनकी आवाज एकदम बदल गई। उन्होंने मुकेश से एकदम अलग रास्ता तय किया।

संगीत के संसार को मनहर ने फिल्मी गीत ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने भक्ति गीत भी बहुत सारे गाए हैं और भक्ति गीतों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती गजलों की परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब मनहर के कुछ बेहद मकबूल गाने आप तक पहुंचाए जाएं। हम तो

0: दोस्तों हम आए तो समय पर ही थे और जा भी समय पर ही रहे हैं, इसलिए इस गाने के जरिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम देर से आए और जल्दी जाए और ऐसा ही भी ठीक नहीं, क्योंकि मंदिर के बारे में इतने सारे किस्से हमने आपको बताए, उनके तमाम मशहूर गाने भी आपको सुनवाए और अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप सुने थे हमारे केंद्र से वेद भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डपड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10:05 हुए हैं, अब आप सुनेंगे लघु वार्ता।

लघु वार्ता में आज का विषय है नारी सुरक्षा, राष्ट्र की आत्मा और समाज का सर्वोच्च दायित्व।

जी हाँ, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज का विषय केवल एक सामाजिक चर्चा नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। विषय है नारी सुरक्षा, राष्ट्र की आत्मा और समाज का सर्वोच्च दायित्व। जी हाँ, आज विज्ञान, तकनीक और विकास के युग में यदि हमारी बेटियाँ भय, असुरक्षा, हिंसा, मानव तस्करी और मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रही हैं, तो हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा। वो प्रश्न है, क्या हम सचमुच एक सभ्य समाज हैं जिस देश में नारी को शक्ति, जननी, देवी और माँ कहा गया हो, वहाँ यदि कोई बेटी घर से बाहर निकलते समय भय महसूस करे तो वह केवल कानून की विफलता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम आप पर फिर जोर देकर कहेंगे कि ये केवल कानून की विफलता नहीं बल्कि समाज की संवेदनहीनता का भी संकेत है, क्योंकि कानून तो अपना काम करता है लेकिन इससे पहले किसका दायित्व है? समाज का, हमारा, आपका। भारत की संस्कृति में सदैव कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। आज आवश्यकता केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहने की बल्कि सोच, संस्कार और सामाजिक चेतना में क्रांति लाने की भी है, क्योंकि नारी केवल व्यक्ति नहीं सृष्टि की आधार शक्ति है। नारी केवल एक शरीर ही नहीं बल्कि सृजन की शक्ति है। वह एक माँ है, वहन है, बेटी है, संस्कार है, संस्कृति है और राष्ट्र का भविष्य है। जी हाँ, जिस गोद में एक सैनिक जन्म लेता है उसी गोद में एक वैज्ञानिक, शिक्षक, संत और राष्ट्र का निर्माता भी जन्म लेते हैं। यदि नारी सुरक्षित नहीं तो हमारा समाज और हम भी सुरक्षित नहीं। यदि भय में बेटी जी रही है तो राष्ट्र के लिए बहुत ही गंभीर का विषय है, राष्ट्र के अलावा हमारे समाज के लिए बहुत गंभीर का विषय है। भारतीय इतिहास और नारी सम्मान की बात करते हैं तो भारत का इतिहास नारी शक्ति के गौरव से भरा हुआ है। हमारी संस्कृति में माँ दुर्गा को शक्ति, माँ सरस्वती को ज्ञान और माँ लक्ष्मी को समृद्धि का प्रतीक इतिहास में मनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। अहिल्याबाई होलकर ने आदर्श शासन और समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया। तो हम कह सकते हैं हमारी सभ्यता ने नारी को सदैव शक्ति माना है, वस्तु नहीं माना। लेकिन आज फिल्मों, सोशल मीडिया, गलत मानसिकता और नैतिक पतन के कारण महिलाओं की जो एक दृष्टि है उन पर वो सम्मानजनक नहीं देखी जाती। ये क्या कारण है? ये कारण है हमारे कमज़ोर संस्कारों का। और अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है तो पूरे समाज के पतन का संकेत बनता है। वर्तमान में समाज की भयावह स्थिति आज समाचारों में या आए दिन हम ये सुनते हैं कि बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, महिलाओं की हत्या हुई है, मानव तस्करी हुई है, घरेलू हिंसा हुई है, साइबर उत्पीड़न हुआ है, मानसिक शोषण हुआ है। सबसे दुखद बात है कि कई अपराध घर, परिवार और परिचितों के बीच में ही सामने आते हैं। यह स्थिति केवल कानून से नहीं सुधरेगी बल्कि जब तक समाज की, हमारी और आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक सच्ची सुरक्षा संभव नहीं है।

आइए अब बात करते हैं सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। संस्कारों की क्रांति बेटियों को डरकर जीना सिखाने से पहले बेटों को सम्मान से जीना सिखाना होगा। यदि बचपन से बच्चों को यह संस्कार दिया जाए कि हर महिला सम्मान की पात्र है, नारी कोई वस्तु नहीं, उसकी स्वतंत्रता और गरिमा सर्वोच्च है, तो अपराधों में स्वतः ही कमी आती चली जाएगी। विद्यालयों, परिवारों और समाज को मिलकर चरित्र निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए। हो भी रहा है, लेकिन सशक्त तरीके से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि नैतिक शिक्षा, महिला सम्मान, संवेदनशीलता को हमें जीवंत बनाना होगा। समाज को क्या कदम उठाने चाहिए, आइए इस भूमिका पर बात करते हैं। परिवार की भूमिका पर बात करें तो घर से ही बेटा बेटी में असमानता का संस्कार दिया जाना चाहिए। बेटों को महिलाओं के प्रति सम्मान सिखाया जाए। शिक्षा और जागरूकता के साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा और महिला सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने बहुत जरूरी हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन उसका एक फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को सोशल मीडिया और इंटरनेट के सही उपयोग की शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि हमारा समय फिजूल में जाया ना हो। कठोर कानून और त्वरित न्याय, महिलाओं के अपराधों पर शीघ्र न्याय अगर होता है तो इससे भी अपराधों पर कमी आती है। राष्ट्रभक्ति और नारी सुरक्षा पर बात करें तो सच्ची भक्ति या सच्ची देशभक्ति केवल तिरंगा लहराने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्ची भक्ति या देशभक्ति तब होगी जब देश की हर बेटी बिना भय के घर से बाहर निकल सके। जिस राष्ट्र की महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित होते हैं, वही राष्ट्र विश्व में महान बनता है और वही समाज जो है वो पूजनीय और वंदनीय होता है। यदि हम देश को, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो पहले भारत की नारी का सम्मान, उसका आदर्श राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। एक सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, लेकिन समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी बेटियों और महिलाओं की रक्षा और सम्मान सुनिश्चित करें। और इसके सार में हम यही कह सकते हैं, समाज तभी महान बनता है जब उसकी बेटियां सुरक्षित होती हैं। नारी केवल परिवार की नहीं, राष्ट्र की गरिमा होती है। आइए हम संकल्प लें, हर महिला का सम्मान करेंगे, बेटियों को भय नहीं आत्मविश्वास देंगे, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर बेटी गर्व से कह सके, यह मेरा देश है, यह मेरा समाज है, यहां मैं सुरक्षित हूं। जी हां, जिस राष्ट्र में नारी सुरक्षित होती है, वही राष्ट्र वास्तव में शक्तिशाली होता है। आइए मिलकर ऐसा राष्ट्र बनाएं जहां नारी केवल पूजनीय शब्द ना रहे, बल्कि वास्तविक जीवन में सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ जी सके। इस बात का संकल्प हम सबको लेना है।

अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता, ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 10:15। अब सुनिए कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है बातें आपकी गीत हमारे, और मैं हूँ आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अस्मिता। श्रोताओं, जिंदगी में हर इंसान सुख दुख, सफलता असफलता और कई तरह की परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है, और वो होती है अच्छी सोच और हमारे सकारात्मक विचार। जी बिल्कुल श्रोताओं, तो आज इसी विषय पर हम आपसे बातें करेंगे और साथ ही साथ आपको सुनवाएंगे खूबसूरत से गीत। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के बाद और इस विज्ञापन के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम बातें आपकी, गीत हमारे में। और आज हम बात करेंगे हमारी अच्छी सोच और सकारात्मक विचारों के बारे में। श्रोताओं, कहते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारा जीवन बनता है। अगर सोच अच्छी हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, और अगर मन नकारात्मक विचारों से भर जाए तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में अच्छी सोच और सकारात्मक विचार रखना कितना ज़रूरी है। श्रोताओं, इंसान का जीवन उसकी सोच से बनता है। अगर व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करे तो उसका मन शांत रहता है, लेकिन अगर हर समय नकारात्मक बातें सोचता रहे तो तनाव और चिंता बढ़ने लगती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक व्यक्ति कठिनाई में भी सीख खोजता है और वहीं दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में हार मान लेता है। फर्क केवल हमारी सोच का होता है। जिस इंसान ने विषम परिस्थितियों में सकारात्मक सोच से उस चीज को देखा तो उसने उस कठिनाई से एक अच्छी सीख ली, और जिस व्यक्ति ने उसी परिस्थिति को नकारात्मकता के साथ देखा तो उसी व्यक्ति ने उस परिस्थिति को पहले ही पार करने से पहले हार मान ली। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। श्रोताओं, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी दुख या परेशानी आएंगी ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखना चाहिए, हार के बाद फिर से कोशिश करनी चाहिए और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। पर अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें टूटने नहीं देती, हमें हर परिस्थिति में खड़ा रखती है, हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखती है और हर परिस्थिति में खुद को उस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने की हिम्मत देती है।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
2: और ये
3: मेरी गुड़िया की ना।
4: पर दादी
0: हाँ
4: आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

बातें आपकी, गीत हमारे, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, जब मन में अच्छे विचार होते हैं तो तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है। वो जानता है कि अगर आज मुश्किल है तो कल बेहतर भी हो सकता है।

ऐसी सोच इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। अच्छी सोच रखने वाले लोग दूसरों की मदद करते हैं, सम्मान देते हैं और लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं। इससे रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ता है। जी हाँ श्रोताओं, देखिए सकारात्मक सोच और अच्छे विचार हमारे जीवन को क्या से क्या बना सकते हैं। उनमें इतनी ताकत होती है कि हमारे एक साधारण से जीवन को उज्जवल जीवन बनाने की क्षमता हमारे विचारों में और हमारी सकारात्मक सोच में होती है। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे और अगर बुरा सोचेंगे तो बुरे बन जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच अच्छी ही रखनी चाहिए।

0: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सुगंध क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: जी श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत और इस विज्ञापन के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे में। श्रोताओं, वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। जो लोग सकारात्मक होते हैं उनमें कम तनाव महसूस होता है, ज़्यादा खुश रहते हैं और बीमारियाँ भी उनमें कम होती हैं। श्रोताओं, जैसे अच्छी सोच जीवन को बेहतर बनाती है, वैसे ही बुरी सोच जीवन को कठिन बना देती है। जो व्यक्ति अक्सर नकारात्मक सोच रखते हैं उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, मन में डर पैदा करती है और इंसान को निराश बना देती है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में समस्या ही देखते हैं। आज की जिंदगी में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, तनाव बढ़ गया है, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ गया है। कई बार लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचार से की जाए तो उस दिन की बात ही क्या है, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा दिन गुजरता है। अगर हम दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा दिन अच्छा होगा, और अगर हम नेगेटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा दिन नकारात्मकता से ही भरा रहेगा। श्रोताओं, हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें ये जीवन दिया है। हमें कोई ना कोई प्रेरणादायक विचार पढ़ने चाहिए और हमेशा सकारात्मक संगीत सुनना चाहिए। ये चीज़ें हमारे अंदर सकारात्मकता को बढ़ाती हैं, हमारे अंदर प्रेरणा को बढ़ाती हैं। सुबह की शुरुआत जैसी होती है दिन भी वैसा ही बनता है। कहते हैं संगत का असर ज़रूर पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हमें प्रेरित करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और हम में सकारात्मकता का निर्वाह करें और हमसे पॉजिटिविटी की ही बातें करें।

जी श्रोताओं, इस खूबसूरत के गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे अच्छे विचारों और सकारात्मक सोच के बारे में कि ये दो चीज़ें हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। जैसी हमारी सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। श्रोताओं, देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर होती है। अपनी कमियों पर रोने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानिए। पॉजिटिव सोच केवल बड़ी असफलता से नहीं आती। कभी परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति को देखना, किसी की मदद करना, इनसे भी मन को खुशी मिलती है और इन चीज़ों से ही हमारे अंदर सकारात्मकता आती है। जितना हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उतना हम उनके करीब जाते हैं, उतनी ही हमारे अंदर नकारात्मकता कम होती है। जितना हम प्रकृति को निहारते हैं, जितना हम प्रकृति से बातें करते हैं, उतना ही हमारे अंदर सकारात्मकता आती है। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है, मन के अंदर एक अलग सी खुशी का एहसास होता है। श्रोताओं, जीवन में असफलता आना सामान्य बात है, लेकिन सकारात्मक इंसान असफलता को अंत नहीं मानता, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ता है। श्रोताओं, इतिहास में कई महान लोगों ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन सकारात्मक सोच

बिल्कुल नहीं छोड़ी। एपीजे अब्दुल कलाम ने साधारण परिवार से निकलकर भारत के मिसाइल मैन बनने तक का सफर तय किया था। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा दी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। जी हाँ बिल्कुल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए भी हमें सकारात्मक सोच रखनी ही चाहिए, क्योंकि कई बार एक प्रयास में सफलता हासिल नहीं होती तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सफलता को पा नहीं सकते। बिल्कुल पा सकते हैं, बस अपने अंदर सकारात्मक सोच को कभी ना ख़त्म होने दीजिए और नकारात्मकता को अपने अंदर हावी ना होने दीजिए। तो देखिए, हर मुश्किल आसान होगी और हर उपलब्धि हम हासिल करेंगे।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी हाँ श्रोताओ, इस खूबसूरत से गीत और इस विज्ञापन के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम बातें आपकी की हमारे में। श्रोताओ, अगर हर व्यक्ति अच्छी सोच रखे तो समाज में बेहतर बन सकता है। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अक्सर झगड़े कम करते हैं, सहयोग बढ़ा के करते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। एक सकारात्मक इंसान कई लोगों के जीवन में उम्मीद की रोशनी ला सकता है। सकारात्मक सोच एक ऐसी सोच है श्रोताओं, जो हमें बहुत कुछ करने की प्रेरणा देती है और ऐसी सोच हमें छोटों में यानी बच्चों में भी विकसित करने की बहुत ज़रूरत है और वो आएंगे अच्छे संस्कारों से, प्रेरणादायक कहानियां सुनकर और छोटी उपलब्धियों की प्रशंसा करके। अगर बचपन से अच्छी सोच विकसित की जाए तो भविष्य मजबूत बनता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता भी मिल जाता है। अच्छी सोच सबसे बड़ी ताकत है और खुश रहना भी एक कला है। ये ऐसे विचार होते हैं जो हमें कठिन विषम परिस्थितियों का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। श्रोताओं, पैसा और सफलता जरूरी है, लेकिन मन की शांति और सकारात्मक सोच उससे भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा सोच वाला इंसान छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है और नकारात्मक सोच वाला इंसान सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पाता। श्रोताओं, जिंदगी बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं सोच बदलनी पड़ती है। अगर हम हर दिन अपने मन में अच्छे विचार, उम्मीद और आत्मविश्वास रखें तो जीवन अपने आप सुंदर बनने लगता है। श्रोताओं, हम तो बस यही चाहते हैं कि जिंदगी में हमेशा अच्छी सोच और सकारात्मक विचार रखने चाहिए और ये हमारे जीवन को अच्छा बनाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे, जिसमें हमने बात की जीवन में अच्छी सोच और पॉजिटिव विचारों का रखना कितना जरूरी होता है। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाएंगे ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ और इस विज्ञापन के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अभी तक वेतन न मिलने के चलते आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ने बताया कि परिवहन निगम कर्मियों को हर महीने देरी से वेतन मिल रहा है और 13 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक प्रदेश में 12,000 से अधिक एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबित देनदारियों और मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि जब तक वेतन कर्मचारियों के खातों में नहीं आता, प्रदेश में आज से बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के 27 डिपो में सुबह 10 बजे से बसें खड़ी कर दी गई है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मेहनत पर आघात बताते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति से करवाने की मांग की है। अनुराग शर्मा ने कहा है कि देश भर में करीब 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 32,000 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक घर से दूर रहकर, कर्ज लेकर और दिन रात मेहनत कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है, जिसकी वजह से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। पंचायती राज चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, वहीं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों तक इन चुनावों को संपन्न करवाने की तैयारियां जोरों पर है। चंबा जिला में इस बार करीब 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, जिसके लिए जिले में 1020 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र चस्क भटोरी जिला का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। वहीं जिले में 7 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनमें भटियात विकासखंड की 109 वर्षीय आशा देवी सर्वाधिक उम्रदराज मतदाता है। जिले में इस बार 1,741 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल्लू जिला में नगर परिषद चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। नगर परिषद अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है, जिसके चलते महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि अनारक्षित वार्डों से भी चुनाव मैदान में है तथा पुरुष उम्मीदवारों को सीधी टक्कर दे रही है। नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में 27 महिला उम्मीदवार मैदान में है। पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है और कुल्लू जिला में एक महिला समूह ने इस दिशा में बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। यहां राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत काईसधार में 15 महिलाओं के एक समूह ने 1 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण व बाड़बंदी का कार्य करते हुए देवदार और बान के पौधे रोपित किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: महिलाओं का हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसी का एक प्रेरणादायक उदाहरण कुल्लू जिला के राधा रानी मंडल बुआई ने प्रस्तुत किया है। मंडल की 15 महिलाओं ने फॉरेस्ट रेंज भुट्टी के काईसधार बीट में पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया है। महिलाओं ने घरेलू जिम्मेवारियों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल की है। राधा रानी मंडल बुआई की महिलाओं ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत काईसधार में 1 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण व बाड़बंदी का कार्य करते हुए देवदार और बान के पौधे रोपित किए। महिलाएं केवल पौधारोपण तक सीमित ही नहीं रही, बल्कि इन पौधों की देखरेख की जिम्मेवारी भी मंडल ने स्वयं उठाई है। इसके अलावा पौधों को पशुओं से बचाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी भी की गई। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कल शिमला के शोघी स्थित एक मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं समेत आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित हो, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक

0: तैयारियां समय रहते पूरी की जाए। राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित जेबीटी भर्ती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 मई से आरंभ होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। वहीं राज्य चयन आयोग ने हाल ही में सम्पन्न सहायक स्टाफ नर्स पदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों से 15 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के आवंटन के विकल्प आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ये प्रपत्र आयोग के कार्यालय में अथवा ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 11:06 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे ये गीत।

द मॉर्निंग सन, इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमन रमानी का संगीत था सूजी दिल। इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया, ना बाबा ना। ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है, और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही की ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन रख सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ राजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा। इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेय घोषाल की आवाज़ से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

0: महिला जगत कार्यक्रम सुनने आलिया हरी सारी बहनियां जो अस्पताल प्यार भरा नमस्कार राम राम ता बहनी केड़े आले तुहारे अहें आशा करते हैं कि हाँ दिया बहनियां बिल्कुल ठीक ठाक होंगिया मस्त होंगिया खुश होंगिया कने सौगी सौगी सोनी करदिया होनिया अपना कार्यक्रम जिसरा ना हुआ महिला जगत। इस कार्यक्रम च अहें गलबात करते आए किसी न किसी विषय ताई कने सौगी सौगी तिन्हारा मनोरंजन भी करते आए शैल शैल लोक गीतन सौगी। तो बिल्कुल अज ते इस कार्यक्रम का आगाज जे असें बहनियां हो ही चुकी रहा कने अज अहां गल करनी अपनी बहनियां ने कि तकनीकी रूप से महिलाएं यानी हमारी बहनी कियां सशक्त जे असें बनी सकती आई आ क्योंकि दिखा भाई अज का समय जे असें तकनीका समय आ मोबाइल होई गए इंटरनेट होई गए ऑनलाइन बैंकिंग होई गई डिजिटल शिक्षा होई गई एआई कने सोशल मीडिया इस सारे जे से हमारी जिंदगी रा एक अटूट हिस्सा जे असें बनी चुकी रहे अज के टाइम च क्योंकि ताली जे एक महिला तकनीका ते जुड़ी आई तो वे केवल आपू जुड़ी आपू नहीं जुड़ी बल्कि इसे सारे परिवार जो सारे समाज जो सौगी लेने चलती आई। तकनीकी सशक्तिकरण के मतलब हुआ कि भाई तकनीका का सही उपयोग सीखना भाई तकनीकी सशक्तिकरण की अं गल करते आए तो इसका मतलब हुआ कि भाई तकनीका का सही उपयोग आना चाहता हाँ जो डिजिटल दुनिया जो अच्छे ने अं समझी सकी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ जो असं उठाई सकी कने तकनीका के माध्यम से आपू आत्मनिर्भर जो असं बनी सकी भाई आज का समय जो है सिर्फ मोबाइल फोन पर गलबात करने का साधन नहीं रही गया बल्कि इसके अलावा मोबाइल से अह शिक्षा ले सकता है रोजगार कर सकता है बैंकिंग कर सकता है अपने स्वास्थ्य के बारे च जानी सकता है कने बड़ी सारी जानकारियां जो है फोन के माध्यम से अज अह ले सकते हैं तो अहरी बहनियां जो भी बड़ा जरूरी है कि इस तकनीका के बारे में पूरी जानकारी जो है होनी चाहिए क्योंकि इन तकनीका जानकारी वाली जहारी बहनियां जो होंदिया आई तो से आत्मनिर्भर बन दी आई क्योंकि ये आर्थिक रूप से अहारी बहनियां जो मजबूत करता है घर बैठे अहारी बहनियां जैसे काम कर सकें ऑनलाइन अपना छोटा जहा व्यवसाय भी चलाई सकें कने सोशल मीडिया के माध्यम से तिना चीज़ा जो अगे बता बेची भी सकें अगे तिनारा और विस्तार जैसे कर सकती आई कने अपनी तकनीका के अवसर से से नए नए अवसर जैसे अभी तलाशी सकें भाई पहले दे समय की अगर गल करिए तो स्कूल या पढ़ने वास्ते स्कूल या कॉलेज जाना जो है बड़ा जरूरी होता था लेकिन आज मोबाइल कने इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे रहे पढ़ाई जो है सह भी हो जाती आई है कने अह जो कई सारी जानकारियां मिलती आई है कने कई सारे अह जागरूकता भी अह जो इन मोबाइल रे इन तकनीका के जरिए अहारा फायदा जो है होता आया कने पहले अगर अहें गल करिए मोबाइल इंटरनेट के सही उपयोग की तो आज हर महिला जो स्मार्टफोन चलाना जो असें आना चाहिदा इंटरनेट का उपयोग करना आना चाहिदा क्योंकि आज एड़ा टाइम आई चुकी रहा कि अहें कुसी और दी पर इना कम्मा ताई डिपेंड नहीं हो सकते अहां जो आपू ये चीज़ा आने चाहिदियां ताकि वक्त रहिंदे अहें तीसरा उपयोग जो असें करी सकीए आहारे अज के समय की अगर अहें गल करिए दिखा किसी भी अहें बाहर जाते आए तो अजकल पैसे लैने की जरूरत नहीं अजकल अहें ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है अजकल ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना हो चुकी रहा डिजिटल भुगतान होंगे आए इन्हे माध्यम से भुगतान जैसे हो ही जाते आए कने यही चीज़ा जो असें अहां ताई बड़ा जरूरी आ अहारी बहनियां ताई ये चीज़ा सीखना जो असें बड़ा जरूरी भी हो चुकी रहा आज ऑनलाइन शिक्षा कने स्किल्स भी अहें घर बैठे सीखी सकता है जियां सिलाई होई गई ब्यूटी पार्लर होई गया या कंप्यूटर डिजाइनिंग भाषा मतलब बड़ी सारी चीज़ा से ही अहें कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन सीखी सकते आए कने नए नए बिजनेस भी अहें शुरू करते आए भाई कई आरी बहनियां हुई हैं तिन्हारे अंदर बड़े सारे टैलेंट जैसे छुपे होंगे आए कई सिलाई अच्छी करते आए कई घरेलू उत्पाद बड़े अच्छे बनाते आए कई खाना बड़ा अच्छा बनाते आए तो इन कलाओं जो से अगे इन तकनीकों के माध्यम से अगे बधाई सकता है कने एक अपना अच्छा व्यवसाय जैसे भी शुरू कर सकता है कने सौगी सौगी जितना जरूरी इन तकनीका जो सीखना उतना ही जरूरी आ कि इन साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी लेना भी बड़ा जरूरी आ क्योंकि एक पासे जिथे इतने सारे इसरे लाभ है तिथी किती ना किती नारे थोड़े बहुत हानियां भी अहें देखते आए भाई कई बार एड़े फ्रॉड जैसे भी हो जाते आए तो कुछ गल्लां दा ध्यान रखना भाई किसी ने भी अपना ओटीपी जैसे साझा बिल्कुल भी नहीं करना कोई अनजान लिंक आ तिस पर भी क्लिक नहीं करना चाहिंदा अपना पासवर्ड कुसी जो भी नहीं दसना कने अपने सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी जानकारी जैसे निजी जानकारी साझा जैसे बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ा जी इसे कितनी ना कितनी अहाँ जो बहुत बड़े संकटा ची भी पुजवाई सक गई। भई अहें बोलते आए ना कि किसी भी चीज़ा का एक पहलू अगर अच्छा तो एक पहलू खराब भी होंदा आया, तो अगर इसका अच्छा पहलू अहें सीखी करते आए तो जरूरी है तीसरे बुरे पहलू पर भी अहारी नज़र होनी चाहिए, कन्ने जरूरी नहीं कि अहें तीस कोई नुकसान अपना करी लीए, कन्ने इस बारे च भी हाँ जो ध्यान जी असें बिल्कुल रखना चाहिए। कन्ने गल करिए हमारे गाँव की महिलाएं की, भाई सारी महिलाएं अजकल दिखा बधी बचाई ने इन चीज़ा जो सीख दी आई हैं, कन्ने सीखना भी चाहिए भाई बड़ा जरूरी भी आ। कन्ने धीए ही अजकल अपने गाँव की अगर गल करिए दिखा ऑनलाइन खेती बाड़ी की जानकारी भी अहें ले सकते आए, योजनाओं का लाभ भी अहें चक्की सका है, ऑनलाइन प्रशिक्षण भी अहें प्राप्त कर सका है, कन्ने घर बैठे बड़ी सारी कमाइया दे अवसर भी अहें प्राप्त करी सका है। तो बहन ही अहें बस इतना बोलना चाहते आए कि इन तकनीकों का जिथे अहाँ जो बड़ा फायदा उत्थी कितनी ना कितनी नुकसान भी है, तो इस चीज़ा का अहाँ जो बिल्कुल खास ध्यान जी असें रखना बड़ा जरूरी है। कन्ने इन तकनीकों जो सीखने खातिर अहाँ जो अहाँ महिलाओं जो मतलब एक परिवार की भूमिका का भी बड़ा महत्व योगदान होंदा है, कन्ने इन चीज़ों परिवार जो भी इन्हों साथ जैसे बड़ी चढ़ी ने देना चाहिए, कन्ने कुड़ियाँ जो भी इन तकनीकों से जोड़ना बड़ा जरूरी है। अहें बस इतना ही बोलना चाहते हैं भैनियों कि भाई तिथि जे इन चीज़ा जो अहाँ जो सीखना जरूरी आ उतना ही अहाँ इस बारे से जानकारी होना भी जरूरी आ, क्योंकि अज का समय जे अस एक तरीके का ऑनलाइन जमाना हर चीज़ अहें फोना ते इंटरनेट के माध्यम से ही करते आए, कने इसरे बारे च अहाँ जो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वक्त कभी भी एड़ा पी सकता ताली जे अहाँ जो इसका इस्तेमाल जैसे करना पी जाए, तो ताली अहाँ जो कुछ पर निर्भर नहीं होना पाओ, ताली अहें आपू इस चीज़ा ने साझा अपना काम जैसे करी सकी है, इसलिए इन चीज़ा ते बिल्कुल जुड़ी ने भी रहना बहुत जरूरी आ। कने हूँ ये गल अहें कीती कि भाई तकनीकी रूपा ते अहारी बहनियां जैसे कि सशक्त बनी सकदियां आई हैं, कने हूँ अहाँ एक छाल जहा लोग गीत अपनी बहनियां जो सुनवाना लेकिन इस अंतराल ते बाद।
1: में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी बहनों, इस छाल छाल लोकगीता कने इस विज्ञापन के बाद एक बार फिर तुहां दा स्वागत कर दिया है कार्यक्रम महिला जगत च, जिस जहाँ गल की तुहारी तुहाने इस गीता ते पहले कि भई तकनीकी रूपा ते भी अहारी बहनियाँ जो सशक्त जैसे जरूर बनना चाहिए, कने हूँ अह गल करनी अपने बच्चे दे बारे च। जी हाँ भई दिखा, कई बार बच्चे आए तो से कई बार जिद जैसे करते आए, कने इन्हें जिदा जो अहें तिनारी शरारत जैसे भी समझते आए, लेकिन कई बार ये जे तिनारी चिड़चिड़ापन हुआ कने जिद्दा व्यवहार जिद्दी व्यवहार हुआ, ये केवल तिनारी शरारत नहीं होंगी बल्कि तिनारे मना च चली करती हुई उथल पुथल दे ये संकेत होंगे है। कई बार अहें माता पिता हुई ने भी बच्चे रिहतारे ताई सोचने ताई कुछ एड़ी गलतियां जो ऐसे करी जाते हैं जिन्हा प्रभाव जो बच्चों पर नकारात्मक पड़ता है। इसलिए अगर अहें अपनी प्रतिक्रियाओं जो थोड़ा जे बदल लीए तो बच्चे के स्वभाव जो अहें सकारात्मक बदलाव जो ऐसे करी सकते आए। जी हाँ, समझने के बजाय समझाना, भाई कई बार क्या हुआ कि बच्चा रोई करता हुआ कने गुस्से च हुआ ताली ती जो अहें तर्क कुछ बोलना शुरू करते हैं, तर्क देना शुरू करते हैं, लंबी लंबी नसीहत देना शुरू करते हैं, लेकिन उस समय बच्चे का जो दिमाग हुआ से तर्क या किसी भी नसीहत जो समझने खातिर स्थितिया च नहीं आता है, कने इस स्थितिया च शब्दां रा अहां जो कम ते कम उपयोग जैसे करना चाहिंदा, कने उपदेश देने दे बजाय तिनारी उपस्थिति ते उस तिस्सो सुरक्षित महसूस जैसे कराना चाहिंदा, कने ताली जे बच्चा शांत हो जाइए ताली तिसने इससे गल्ला च बारे च अच्छे जे गलबात जैसे करना चाहिंदी, तिसते क्या हुआ बच्चा तिस अपनी गलतियां जो समझा कने अपने व्यवहार जो बेहतर बनाने की कोशिश जैसे करता आया। कने दिखा कई बार क्या हुआ कि माता पिता जी ऐसे बच्चे की गलती दिखते ही तिसो सुधारने या डांटने लग जाते आए, या जाने बिना ही कि इसते व्यवहार के पिछे वजह आखिर क्या आई, बिना इससे बारे च जाने है तीसरी भावनात्मक जुड़ाव जो कई बार सीख अक्सर अनसुनी कर देंदे आए। पहले बच्चे जी अहां जो स्थितिया जो समझना बड़ा जरूरी होता है, अगर यह चिड़चिड़ा हुई करता आया तो पहले उसने प्यारा ने गलाइए, तिसने सहानुभूति दसीए, तिस गले ने लगाइए, कने उसके बाद ताली जैसे समझ जाइए ताली तिसने तिस बारे च ढंगा ने गल जैसे करने चाहिए, क्योंकि इन्हें छोटी छोटी गलों के बारे च अगर अहें ध्यान नहीं रखिए तो बच्चे इथा ती जैसे चिड़चिड़े कने गुस्सैल होना जी ऐसे शुरू होंदे आए, कने ताली जे बच्चे अपने पसंदीदा खेल या TV जे ऐसे देखते हुए तिस च खोए हुए होंदे आए तो तिन्हें अचानक टोकना या एक झटका जिया देना से भी गलत होंदा आ, इससे अक्सर बच्चे जे ऐसे चिड़चिड़े हो जाते आए, तिना सीधे बोलना कि भाई अभी इस चीज़ा जो तुम्हें बंद कर दो आ कि कहने की बजाय तो पहले ही बोली दो आ कि भाई 10 मिनट या किसी इतने टाइम में तक तुम्हारे कार्यक्रम या कुछ भी जो ऐसे काम करना आया, कने उसके बाद अहाँ बैठी ने खाना खाना या उसके बाद बैठी ने अहाँ गल करनी भाई कुछ भी काम जो ऐसे मिली ने करना, इससे क्या हुआ तिना जो काम करने रोकने ताई मानसिक रूप से तैयार होने का समय जो ऐसे मिली जाता है, कने फिर से आसानी ने अपनी गल जो ऐसे से मनी जाते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार क्या हुआ बच्चा कोई TV देखता हुआ या कुछ और करता हुआ कने माता पिता क्या हुए से अचानक जो बोली देंदे आए कि भाई इस चीज़ा जो बंद कर दो या एक गल सुना तो बच्चे तिस ताई क्या हुए से ज़्यादा चिड़चिड़े जे ऐसे हो जाते हैं, इससे पहले बच्चे जो दसी देना कि भाई इतने टाइम तक तुम्हें यह काम करना उसके बाद अहाँ ये करना, तो तिसते बच्चे जो क्या हुआ कि पता लगी हाँ कि भाई उस टाइम के बाद अहाँ इस काम जो करना आया, तिसते बड़ा बच्चे व्यवहार च बदलाव जैसे अहाँ जो देखने जो मिलता आया। कने अक्सर क्या होंदा है कि अभिभावक जे माता पिता जे ऐसे ये उम्मीद करी बैठते हैं कि बच्चे बड़े ही तरह अपनी भावनाएं जो नियंत्रित करना सीखी जाइए, जियाँ हार मिलने पर कोई दुखी ना होना, लेकिन भावनाओं जो समझने दा एक संभालना भी एक कला होंदी आई जिसे सीखना कने समझने में परिपक्वता की जरूरत होंदी आई, बच्चे ते हर बात च परफेक्ट होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहती, इसके बजाय तिना जो निराशा जो स्वीकार करना कने तिना ए दसना कि हार कने गुस्से जिया भावनाएं जिया ए भी सही है, ए भी सकारात्मक है, इना तरीके ने भी इना जो जाहिर जिया से आहें करी सकते आए। तो इसते भी बच्चे व्यवहार च जिया से बड़ा फर्क जहाँ जो देखने जो मिलता है। कने दूजी गल ये कि बच्चे का व्यवहार कोई भी व्यवहार ऐसे रातों रात जैसे बदलाव इस चीज बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए माता पिता जो अपने व्यवहार जो भी नियंत्रित करने अत्यधिक धैर्य रखने की जरूरत जैसे होंगी आई ताली जे बच्चे सुधरने की बजाय इसते साथ जुड़ना जो अपनी भावनाओं जो साझा करना शुरू करते आए करी देंदे आए तो अनुशासन सजा नहीं बल्कि एक जरूरी सीख जहाँ से भी बनी जाती आई। कने ये छोटी छोटी गल ही तीसरे बारे चाहे अगर ध्यान रखिए तो बच्चा बिल्कुल सकारात्मक होगा कने चिड़चिड़ापन इस बिल्कुल भी कम हो जाना क्योंकि ये छोटी छोटी गल्ला हुई तो इस बारे चाहे ध्यान नहीं देंदे कने इस गल्ला ते बच्चा जे असें चिड़चिड़ा कने गुस्सा लाना जे असें शुरू हो जाता आया। कने हूँ अह कार्यक्रम च अगे बढ़ना एक और लोक गीता कन्ने कन्ने उन एक विज्ञापन सुनना कन्ने उसके बाद सुनाना तुहां जो एक छाल या लोक गीत।
0: वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 होने को है। अब थोड़ी देर में सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अस्मिता। तो देर ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं LOC कारगिल फिल्म के इस गीत के साथ।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वरों में कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा।

0: Hey, relax.
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

कुमार सानू और अलका याग्निक के युगलवाजों में साजन फिल्म से ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं सैनिक भाइयों सोनू निगम की आवाज़ में कल हो ना हो इस फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोच कर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहाँ पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है 100 अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट काफ़ी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही ढर्रे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमें ये भी बताइए कि इसमें आवाज किसकी है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुला।
1: मन अड्डे की आवाज़ में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो ज़रूर शामिल होगा। तो बिल्कुल सही बात तो है, क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं, और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुँचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफ़ी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारी कौर साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीज़ों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी। तो आप किस तरह का पहलू देखते हैं अपने जीवन में, और हमने पूछा था कि जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं, क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं, या गाते झूमते नाचते अपनी उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए, हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उम्मीद है कि ये गीत भी शायद आपके लिस्ट में शामिल किसी एक गीत से मिलता हो।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहाँ जवाब महका गाता झूमती सपना रचना जाने कहानी सहारा बेसहारा जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे कौर साथी कहने कि कुछ शब्द हैं जिंदगी पहेली कोई समझ सवाल जवाब ख्याल जीना सहारा अनजानी बहती झूमती गाती जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रही हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है, तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हों, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता। भाई इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी पहेली सवाल जवाब मुश्किल ख्याल महका मन नदी धारा उलझन गाती झूमती रचना या रचती अफसाने हकीकत सपना कहानी अनजानी जानी पहचानी सहारा बेसहारा जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उछा लिए हैं, तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी।

0: साइलेंस साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए।
0: क्यों बच्चों ठीक है ना?
2: नो सर नो सर, रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर।
0: क्या कहा?

0: तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली, करेक्ट?
1: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: अच्छा, ये भी गलत?
2: जी हाँ।

0: ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आपको लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने ज़िंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई ज़िंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है।

वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन से में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म, बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज़ या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बंद कर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई, तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे

सारे स्वप्ने दिवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अतः चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं, फिल्म पड़ोसन का, कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। ये इन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफ़ी सारे शब्द चुन लिए हैं, और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं, और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुनें, तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहाँ उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही हैं अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में, तो हम उन्हें बता दें जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोअर 100K लिखे हैं, यानी 1,00,000 फॉलोअर हैं, 1,00,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती हैं वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती हैं। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियाँ चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला। एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज़ है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी 2 दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहाँ यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियाँ इंसान को मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन अपने शहर की गलियाँ, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था, क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, CID फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

0: मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने के सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूँ लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला, जो चीन की सीमा पर है, वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम, बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी, तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफ़ी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफ़ी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भाई ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज़्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज़ किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफ़र जारी रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

0: सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के पांच अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देश

0: विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराओका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी की बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निर्देशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

छू छू छू सिंध बाद भी थे लड़कू मेरा नाम चिं चिं चू बाबा चिं चिं चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू डू मेरा नाम

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब।

0: चले गए हम।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी की बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है दोपहर के 3 बजने को हैं। थोड़ी देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के विकास में पेंशनरों और कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वे आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों को चार दिन के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों को भी चार दिन में निपटाने के लिए कहा गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति में ओपीएस के लाभ जारी रखेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख में मामले को आगे सूचीबद्ध किया जाएगा। मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा नेता व विधायक अनिल शर्मा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य मंडी को आधुनिक, सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटन की दृष्टि से विकसित शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों में मंडी नगर निगम के विकास की ठोस कार्य योजना है। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने जहां 4 नगर निगमों सोलन, धर्मशाला, पालमपुर व मंडी के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने सोलन नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने बताया कि चारों नगर निगमों के कुल 64 वार्डों में भाजपा ने कांग्रेस से पहले

0: ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस को कई वार्डों में उम्मीदवार खोजने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉ सिकंदर कुमार, सुरेश कश्यप और डॉ राजीव भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एकजुट होकर पार्टी द्वारा आयोजित बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस भी चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रही है। पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मंडी में नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। इस बीच अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन में चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हुए नई योजनाएं लाकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
1: मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने विश्वास जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम सोलन के लिए जो बजट की कोई कमी भी जो है नहीं आने दी जाएगी और जो भविष्य की जो योजनाएं हैं और जो भी वार्ड की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के बड़े योग्य उम्मीदवारों को उतारा गया है। और मैं नगर निगम सोलन प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील भी करता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके उन्हें जिताएं।
0: राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर आज शिमला में सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान निगम की चालक परिचालक यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर आज कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा तो प्रदेश में बसें खड़ी कर दी जाएंगी। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि बीते दिन हड़ताल की चेतावनी देने के बाद निगम प्रबंधन ने आनन फानन में 3 डिपों के कर्मचारियों को वेतन जारी किया, जबकि बाकी 27 डिपों के कर्मचारी अभी भी वेतन का इंतजार कर रहे हैं। यूनियन ने कहा है कि अगर अगले महीने से कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करते हुए बस सेवाएं ठप करेंगे।
2: हमने जिस डिपो में जिन 26-27 डिपुओं में सैलरी नहीं मिली है, हमने उनको क्लियर आदेश दिए है कि जब तक आपको पैसे का मैसेज नहीं आता है आप इनकी लिमिट की बात इनसे ना सुने, आप बैंक की बात इनसे ना करें, वो इनका काम है। अगर ये बोलेंगे कि बैंक को भेज दिया चेतन ना डाले तो हम तो इनके पीछे घूमने को रहेंगे। हमने क्लियर आदेश दिए कि 10 बजे आपने गेट मीटिंग करनी और गाड़ियां खड़ी करनी है। अगर मैसेज आता है तो गाड़ियां चलाओ, नहीं आता है तो हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए जिसका विषय है चिंतन शिविर साझा दृष्टिकोण के जरिए भारत में खेलों के भविष्य को दिशा देना। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
4: चिंतन शिविरों का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त करने के बाद भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि ये आज भारतीय खेल जगत की सबसे सामयिक और असरदार पहलों में से एक है। हम अपने राष्ट्र की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, एक ऐसा मोड़ जहां इरादा, निवेश और प्रेरणा अभूतपूर्व रूप से एक साथ मिल रहे हैं। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में खेल हाशिए से मुख्य धारा में आ गया है। इस महत्व के प्रति भी साफ तौर पर राष्ट्रीय जागरूकता देखी जा सकती है, न केवल एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि के रूप में बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव के साधन के रूप में भी। आज हम एक विशाल और विविध तंत्र देख रहे हैं जहां राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन, निगम, संघ और जमीनी स्तर के संस्थान सभी मिलकर खेलों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। चिंतन शिविर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है। खेल अपने आप में कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जिनमें विनिर्माण, मनोरंजन, फिटनेस, मीडिया और शिक्षा शामिल है। ये शिविर इन सभी क्षेत्रों को एक साथ लाने में मदद करता है जिससे एक साझा दृष्टिकोण बनता है जो दीर्घकालिक सफलता के लिए बेहद जरूरी है। ये देश के सामूहिक दृष्टिकोण को सामने लाता है और साथ ही विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करता है जिससे अनुकरण और नवाचार

0: को भी प्रोत्साहन मिलता है। ये शिविर महज एक सम्मेलन से कहीं बढ़कर एक शिक्षण तंत्र है। ये इसमें शामिल होने वाले लोगों को विचारों का आदान प्रदान करने, चुनौतियों को समझने और मिलकर समाधान विकसित करने का अवसर देता है। ये एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में भी काम करता है। सफलता की तमाम कहानियों को सामने लाता है और इस विचार को और पुख्ता करता है कि भारत में खेल महज विशिष्ट पदकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भागीदारी, समावेशिता और राष्ट्र निर्माण भी शामिल है। फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन और साइकिलिंग प्रतियोगिताओं जैसी सामुदायिक गतिविधियों ने खेल के प्रति हमारे नजरिए को एक नया रूप दिया है। आज के वक्त में सभी के लिए खेल के साथ साथ उच्चतम स्तर पर उत्कृष्टता पर जोर है। पदक जीतने की आकांक्षाएं और व्यापक भागीदारी अब अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि वे एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं। श्रीनगर में शिविर का आयोजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस शहर की शांत सुंदरता न केवल खेलों की विचारधारा के लिए एक मनोरम पृष्ठभूमि प्रदान करती है, बल्कि शांत चिंतन का भाव भी देती है, जो सार्थक संवाद के लिए बेहद जरूरी है। इस चिंतन शिविर का एक अहम केंद्र बिंदु श्रीनगर खेल संकल्प को अपनाना था। यह संकल्प महज एक आशय का दस्तावेज नहीं, बल्कि ये एक एकीकृत ढांचा है जो भारतीय खेल जगत के सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को एक साथ बांधता है। साझा लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके ये एक ऐसा रोड मैप तैयार करता है जो विखंडन के बजाय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। श्रीनगर खेल संकल्प की असली ताकत विभिन्न भागीदारों, सरकारों, संघों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक मंच पर लाने की क्षमता में निहित है। ये इस विचारधारा को और पुख्ता करता है कि भारत के खेल जगत का उत्थान अलग अलग प्रयासों से नहीं हो सकता, इसके बजाय इसे एक समन्वित सहयोगात्मक दृष्टिकोण से संचालित किया जाना चाहिए, जहां संसाधनों, ज्ञान और विशेषज्ञता को एक साथ लाया जाए। भारत को 2036 तक ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल होने की अपनी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए ये समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने के लिए न केवल प्रतिभा की जरूरत होती है, बल्कि एक सुचारू तंत्र की भी आवश्यकता होती है, जिसमें जमीनी स्तर पर पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, उत्कृष्ट कोचिंग, प्रतिस्पर्धा का अनुभव और निरंतर वित्तीय व संस्थागत समर्थन शामिल है। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 3:10 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
3: तो सुनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
4: तो कश्मीर चले?
3: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है, जो 4 अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
4: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
3: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
4: कितनी
3: वो, है
4: पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में

0: से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफ़ेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई डिज़ाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफ़ी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजनपूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाँकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत यह है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ और पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध हैं। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम या सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौक़ों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिज़ाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं। और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानीपूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफ़ी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए, और एक दो महीने का समय लग जाता है। बहुत अच्छी डिज़ाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
0: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण।
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीज़ों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ हमारे पास होगी या नहीं होगी। हम सब चीज़ें खरीद लाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को

0: देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते थे।
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, सब लोग घर में चक्की भी चलना है तो
1: हाँ,
0: गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से पानी निकालना है,
0: हाँ
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते थे।
0: काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है, उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी
0: हाँ
1: बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में तो
0: आहार में
1: इतनी, आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: ये हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती है, हर सीजन के फल मिलते हैं, अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
1: रह
0: जीवन
1: सकते
0: गुजार
1: हैं।
0: सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक है, काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रसस्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है
1: एक
0: जी।
1: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले,
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजरी थी इस गाने है ना, जब हाँ। अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है।
1: तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
0: बहुत सारे हमारे साथी,
1: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुना ली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
0: और अब लेते हैं एक
1: अंतराल।
0: ब्रेक।

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है।
1: है, बहुत
0: और
1: सुंदर बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जाणिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने

0: लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पर चढ़ के खिड़की थी, तो वहाँ खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफ़ी हैवी थी, वो चढ़ी वहाँ बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी,
1: नहीं
0: ऐसा लग
1: देखिए,
0: रहा था।
1: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि
0: क्या बात
1: ऐसा
0: है।
1: नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए, यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा
0: बिल्कुल।
1: होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम अमरूद खाते थे,
0: हाँ,
1: बेर
0: सारे
1: खाते
0: फल।
1: थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद
0: अरे,
1: होते हैं।
0: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे,
1: खाया
0: मतलब
1: जाता है।
0: खाया जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है।
1: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया
0: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए
1: जी।
0: थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें ले लिखी हैं। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे
1: पढ़ने
0: मैंने
1: में
0: आपका
1: दिक्कत
0: पढ़
1: नहीं
0: लिया।
1: आती है ना।
0: हाँ, वो इजली से आंखों में अटैक कर जाता है,
1: जी,
0: हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है, ऐसी कोई
1: एक हमारे
0: दिक्कत नहीं।
1: साथी लिखते हैं, मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है, मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना, जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना? और क्या करें, सुने गीत।
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा ना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे, लगता तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया है।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते, कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों की, लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये
0: तो
1: टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है
0: लेकिन
1: ना?
0: इसमें मजा आता है, जिसको लगा रहे मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली,
0: तो कोई
1: वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। और सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसी ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका

0: अर्थशामिल है आत्म यानी खुद पर विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी
1: एक
0: आपने।
1: हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
0: क्या
1: एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करें, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी, पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास से ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है।
1: क्या बात है,
0: बहुत सुंदर विचार।
1: और इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भून कर पीस कर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिला दे, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है, बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री उन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और
1: है?
0: ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: हाँ, हमें खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, और आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं कि हम जंक फूड खाके ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खाके भी हम खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है, डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई, एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अब गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो
0: खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना, तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज,
0: कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है,
0: सचमुच हमारे देश में बार जाने को जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
0: और खूब खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
0: और आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंत्री वर्मा का
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती

0: श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
0: जी वो बहुत प्यारा जमाना था, और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया, और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ। जी
1: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल। अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस ज़माने में, और आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर वो फिल्म म्यूज़िक की तो मैं बाद में बात करूँगा,
1: जी
0: जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: आवाज़ सुना, आम अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, तो ये
1: दर्जा
0: अनाउंसर का वो
1: होता
0: दर्जा
1: था
0: था मतलब, और
1: जी।
0: वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई
1: हाँ
0: जानता ही नहीं आपको,
1: जी
0: लेकिन अगर अनाउंसर हैं आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर हैं। फिर रेडियो सिंगर होना,
1: जी
0: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युववाणी इंद्र शुरू शुरू हुआ था,
1: जी जी
0: तो जयपुर के जो पहले युववाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: क्या
0: नट के रूप
1: बात है
0: में, एक
1: जी।
0: ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युववाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव
1: जी
0: उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज
1: हाँ
0: मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक, और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या,
1: जी
0: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा,
1: जी
0: और न सिर्फ आऊंगा
1: बल्कि हेड करेंगे।
0: उसका कार्यक्रम का मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ, कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर का।
1: बात है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में

0: एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े
0: है?
1: दिग्गज
0: बड़े
1: लोग वहां
0: दिग्गज
1: से आते
0: लोग,
1: हैं
0: नंदलाल शर्मा जी,
1: जी,
0: फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे काम
1: गंगा प्रसाद
0: कर।
1: जी।
0: हाँ, तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी
0: और
1: जी
0: कर
1: जी
0: रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपने पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि
1: जी
0: मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो
1: वाह,
0: सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला, हम
1: यहां
0: बड़े।
1: एक पल के लिए रुकना
0: जी
1: चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो
0: जी
1: जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके
0: हाँ,
1: बारे में
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: सही है,
1: बताइए।
0: वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं,
1: जी
0: तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे। हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे
1: जी
0: नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का सेतु।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस
0: क्लियर
1: बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए।
0: जी।
1: तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक
0: बिल्कुल
1: बुनियाद
0: बिल्कुल
1: का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: हाँ, ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसडी जा चुके थे। हाँ,
1: ओके
0: और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था।
1: जी
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का
1: वाह,
0: तुगलक,
1: क्या बात है
0: जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक
1: जी।
0: प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, जिसके वो हकदार थे वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग, ये
1: जी
0: सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे, तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा, जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे। जी
1: बिल्कुल,
0: जी
1: आज जयरंगम जैसी चीजें
0: हाँ,
1: चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको
0: नहीं बहुत
1: कि
0: अच्छा लगता है, बहुत
1: परंपराएं
0: अच्छा
1: आगे
0: लगता है।
1: हैं?
0: मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे।
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो
0: ओ
1: हाय रे वो
0: बढ़िया,
1: दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा
0: बहुत
1: फिल्म का
0: अच्छा है,
1: गाना
0: बहुत
1: है
0: अच्छा है,
1: ना, ये
0: वाह,
1: गाना
0: मेरा
1: सुनते हैं।
0: पसंदीदा गाना है।
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो, राज मंदिर, जेम, पोले विक्ट्री, ये सब उस वक्त तो फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं, इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है,
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था। हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था।
0: जी, और ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें, और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना, और स्कूल से भाग के भी देखना, और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता है। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था, और म्यूजिक ही था, मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
1: ये गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता था,
0: खुद गाते थे
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसको धुनें भी बनाने लगा, और बाकायदा परफॉर्म

0: भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका
0: हाँ, मेरे
1: जारी
0: ख्याल
1: रहा
0: है
1: है।
0: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो
1: जी
0: सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहां जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया,
1: जी
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प,
1: जी
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे बाकी जो दोस्त है वो चला रहा है, हरी डायन उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था,
1: वाह वाह,
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको
1: हाँ
0: उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का ड्रामा कंपटीशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज
1: बिल्कुल
0: इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेश उत्सव हो। तो गणेश उत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेश उत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं,
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना। तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था श्याम फड़के का, कॉमेडी, काका किशासा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी,
1: हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा,
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह,
0: मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, कि वो जयपुर से जा
1: जा
0: चुके थे
1: चुके
0: तब।
1: थे उस दौर में
0: हाँ,
1: जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय हुए।
0: तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमए रोड से 5 बत्ती के पास में सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है,
1: जी
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। फिर
1: बिल्कुल,
0: हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी जी बिल्कुल,
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही, तो लेकिन
1: हाँ
0: इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत
0: बिल्कुल,
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या 1-1 घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने नाम
1: जी
0: सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफी
1: आज भी
0: होता
1: हवा महल में
0: हाँ
1: उनके नाटक
0: है ना,
1: ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था,
1: जी
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको, और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वही होगा
1: जी,
0: कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था,
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान
1: अखबार।
0: का उस वक्त राजस्थान का नंबर 1 अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा या, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक

0: बादक के तौर पे लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ। यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है,
1: क्या बात है।
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया, फिर
1: तो वहां
0: जयपुर।
1: तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
1: थे।
0: सर, सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फकीर,
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से
1: ऐतिहासिक
0: वो,
1: स्टेशन है
0: हाँ।
1: जलंधर।
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल,
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन
1: यस
0: सिंह मीशा,
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
1: बिल्कुल।
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था,
1: जी
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का
1: हाँ
0: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
1: दिक्कत
0: थी,
1: नहीं
0: मतलब,
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर
0: एक
1: में
0: साल,
1: रहे
0: एक साल।
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ में
1: बिल्कुल।
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी।
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, तो शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: तो उनके
1: बिल्कुल,
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तक
0: तो
1: लोग सुनते
0: हाँ,
1: थे और सबसे
0: तो
1: लास्ट में उन्हें
0: हाँ,
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता
0: जी,
1: था
0: और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी।
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला
1: बात
0: मुझे।
1: है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ा इधर उधर,
1: जी
0: तरन्नुम में सुनाऊँ उसको
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल
0: क्या?
1: स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में मुश्किलों का मेला है,
1: वाह,
0: जिंदगी की बस्ती में मुश्किलों का मेला है।

0: मुश्किलों का मेला है। और ये नवगीत का शुरू हुआ था तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं
1: हाफती हवाओं से
0: से,
1: क्या बात है।

0: वाह वाह वाह,
1: कटेगी ये जिंदगी दुआओं से, दर्द के समंदर में कामना ने ठेला
0: कामना ने ठेला
1: है,
0: है, क्या बात है।
1: दर्द

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस
1: धन्यवाद।
0: रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा
1: वो
0: होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
0: जी
1: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था।

0: सफर को आगे बढ़ाने वाला होता है।
1: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
0: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
1: हाँ,
0: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
1: मिनिमम
0: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कवि सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
1: हाँ
0: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था, तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
1: जी,
0: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
1: तो
0: या
1: आपके
0: था।
1: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा
0: हाँ
1: लगा है कि नहीं, क्या
0: हाँ
1: चल रहा है मन
0: तो बस
1: में?
0: वो उनको सूचना जरूर, वो और हमारे संवाद माँ से होता था,
1: जी
0: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ, जो पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
1: जी जी
0: होते थे,
1: जी
0: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
1: वो
0: बताते
1: दौर
0: नहीं
1: भी ऐसा था कि पिताओं
0: थे।
1: से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी,
0: नहीं
1: देकर
0: बिल्कुल, ये
1: गई।
0: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
1: जी
0: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं, तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
1: बाप
0: कोई
1: रे,
0: नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
1: आमने
0: सुना
1: सामने
0: है,
1: देखा। जी
0: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है, और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हंसते हो, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में, जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो,
1: जी,
0: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से
1: ये
0: एक
1: तो नया खुलासा है हमारे
0: था,
1: लिए।
0: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
1: हाँ,
0: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग
0: आते
1: कर
0: जाने
1: लेना।
0: को तंग करना या मस्ती करना,
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत आती
0: शिकायत माँ के पास आ जाती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ मेरे बड़े भाई साहब थे,
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: नंबर दो था, तो
1: जी
0: पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरेलू
1: बिल्कुल
0: नाम,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू,
1: जी,
0: खैर तो वो छोटू की शिकायत जो है
1: रोज आ रही है।
0: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
1: प्रोटेक्शन,
0: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
1: हाँ।
0: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं भूल नहीं
1: उसका जिक्र ना ही करें तो
0: सकता। तो ये एक
1: अच्छा।
0: अच्छा बचपन बीता,
1: जी
0: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
1: अरे
0: मतलब घर में
1: गजब।
0: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे,
1: हाँ, वो अपनी दुनिया
0: वो अपनी
1: उनकी।
0: दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
1: हाँ,
0: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो, और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास, मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
1: बिल्कुल
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एक
0: हाँ
1: था बचपन,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि
0: जरूर,
1: ये
0: हाँ
1: जो
0: बिल्कुल
1: बचपन
0: बिल्कुल
1: के जो दिन हैं उनके
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उनके नाम ये गाना है।
0: बिल्कुल,

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा।
0: जी जी,
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी IAS ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तो मैं एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: गजब, अब ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ही नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें सारे अखबार आते थे। मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वही बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना, है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनता, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे।

0: गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल, तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: बोले, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है
1: जी
0: और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब।
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं
0: हाँ,
1: है,
0: तो खुद
1: और
0: मैंने
1: मुश्किल
0: भी,
1: भी है,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मुश्किल
0: तो
1: भी
0: हाँ
1: है इसको
0: मुश्किल भी है,
1: निभाना।
0: तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें
1: जरूर
0: तो
1: सर, अरे स्वागत है, बिल्कुल
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है।
1: आपकी धुन
0: हाँ,
1: अलग है
0: मैं जो मैं
1: जी,
0: सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत है।

0: होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना, होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना, होने से डरता है यहाँ हर शख्स। और ये खास शेर है वो,
1: स्वागत है।

0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला।
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है, बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं
1: जी
0: रहा, अब नहीं, बहुत हो
1: जी
0: गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते
1: साथ,
0: हैं
1: सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये,
1: की
0: तो फिर
1: कायदे।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहते हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता
1: क्या बात है सर,
0: है।
1: हम बहुत
0: थैंक
1: खुश नसीब
0: यू।
1: हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं
0: मेरे
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशनुमाती है। थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जालंधर में 1 साल बिताने

0: बाद आप कहाँ गए?
1: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर,
0: जी जी
1: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये, कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा,
0: जी जी बिल्कुल।
1: मतलब जालंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा
0: हाँ,
1: शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
0: अच्छा खान पान था।
1: खान पान था, अच्छा मौसम था,
0: जी
1: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा
0: जी
1: था,
0: जी जी
1: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था, लेकिन एक होमसिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापस, है
0: जी
1: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और मैं वो सुन ली गई, मान ली गई, और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
0: वाह
1: तो मैं
0: वाह।
1: वहाँ फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा
0: तो ये
1: उसके।
0: बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते
1: हाँ
0: थे,
1: हाँ
0: युवाणी
1: हाँ
0: करते थे, वहां आपकी वापसी
1: बिल्कुल
0: होती
1: सही
0: है और
1: बात।
0: अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
1: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल
1: तो वहीं
0: बिल्कुल
1: मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पे एंटर हो रहा हूँ
0: जी
1: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
0: जी
1: तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
0: बिल्कुल
1: क्रीम बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
0: जी जी जी
1: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
0: जी
1: वो जयपुर में था,
0: जी जी जी
1: नाटक लिखना, कंपोज करना, प्रोड्यूस
0: बिल्कुल
1: करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ, एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था, जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
0: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे तो
1: पला
0: आप
1: बड़ा
0: सब
1: था।
0: जानते
1: और
0: थे।
1: फिर
0: और
1: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले,
0: जी
1: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सब कुछ, नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा उस वक्त जयपुर में, और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने प्रोग्राम
0: कॉन्सर्ट्स होते
1: कर,
0: थे
1: कॉन्सर्ट होते थे,
0: जी।
1: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
0: वाह, क्या
1: जयपुर
0: बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
1: उसमें एक महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
0: जी जी
1: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया
0: वाह,
1: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
0: क्या बात है,
1: उसका किया,
0: वाह,
1: और इसके अलावा गीत गोविंद,
0: अरे गजब।
1: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, उसके आश्चर्य की बात ये थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया, वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब
0: बिल्कुल
1: उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है
0: बिल्कुल
1: जयदेव जी का,
0: जी।
1: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, और मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किया, रिकॉर्ड किए, गाए लोगों ने
0: संस्कृत में,
1: संस्कृत में,
0: अरे
1: तो
0: बाप रे
1: गाने संस्कृत में हैं
0: जी,
1: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुकी इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है
0: हाँ,
1: ये
0: तो बहुत
1: हम
0: मुश्किल काम है।
1: बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ, और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और
0: जी
1: समझे भी, मतलब
0: वाह
1: गीत
0: वाह।
1: गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में,
0: जी जी
1: तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, वो सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी, तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है,
0: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि
1: तो वो गाने के
0: संस्कृत
1: तौर
0: से।
1: पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
0: वाह वाह वाह। तो ये पूरा
1: इसी
0: जयपुर
1: तरह
0: का
1: से
0: दौर था
1: अभिज्ञान शाकुंतल
0: जी।
1: कालिदास का, तो वो मैंने उस रेडियो अडॉप्टेशन किया,
0: वाह,
1: उसको वो किया, तो ये दो बड़ी वो थे कहना
0: क्या
1: चाहिए।
0: शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका, नाट्य
1: हाँ,
0: समूह।
1: नहीं विकल्प, ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था,
0: हाँ।

0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच-बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही।
1: जी, क्योंकि रेडियो में आप पूरी तरह से अपने अपने अपने आप को झोंक दिया था।
0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो मैंने से पहले किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का,
1: जी जी
0: जो गोगोल का उन्होंने
1: इंस्पेक्टर जनरल का,
0: नौटंकी शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया और वो भी किया।
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार।
0: हाँ, इसमें करनी ही वाला बात नहीं था,
1: जरूरत
0: अंदर से होता था।
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं। मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि,
1: बिल्कुल
0: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि
1: ये मैं करता
0: हूं। हाँ, इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है।
1: बिल्कुल,
0: आप तो उसी तरह से वो, चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी
0: जो स्टाफ में थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती
1: बिल्कुल
0: है
1: होती
0: ना,
1: है जी।
0: जानते होंगे। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स में, बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में, कंपोजर की भी पोस्ट होती है।
1: जी
0: उस
1: जी
0: वक्त 4 मौजूद थे, और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी,
1: जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी।
1: कि नहीं नहीं आप करो,
0: हाँ, मतलब ये होता नहीं है ये,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल,
0: चार कंपोजर हैं स्टाफ में मौजूद हैं
1: तो आप
0: और
1: उनको,
0: उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं,
1: जी,
0: तो उन्होंने छूट दी। और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ
0: एक बार मैं बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत,
1: हाँ
0: मैं नीर भरी दुख की बदली,
1: हाँ
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना,
1: जी
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था,
1: जी
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के
1: हाँ
0: लेके, उसको कोई पढ़ता था, और गीत होता था कोई गाता था,
1: वाह
0: तो उस
1: वाह
0: तरह का एक
1: वाह,
0: प्रोग्राम, तो वो मैं करता था। तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: वाह
0: इनको
1: वाह,
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया। तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये
0: ये
1: चीजें
0: हुआ।
1: चलती रहीं लगातार, ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को है। थोड़ी देर में सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नी सामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसीवयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20%

0: छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 30,413 पर बंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल रात तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी की हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:05 हुए हैं और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित बरेली किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। 5:30 पर युवा साथियों के लिए लेकर आएंगे युव मंच कार्यक्रम। शाम 6 आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। सफर सुहाने गाने ने पुराने कार्यक्रम सुनिएगा 6:05 पर। खेती बाड़ी कार्यक्रम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर भक्ति संगीत कार्यक्रम सुनिएगा। रौनकां गराइंदियां कार्यक्रम का समय रहेगा 7:25। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अंक और रात्रि 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर सुनिएगा हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 विज्ञान जगत कार्यक्रम लेकर आएंगे और चांदनी रात कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या।

भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले हैं जो मेरा यानी प्रकाशन दा प्यार भरा नमस्कार जी बिल्कुल दिखा संझका वेला ईरा कने भजन कीर्तन दा दिखा जे ऐसा समय है ना आहा सारा दिन अपने कम्मा काजन से व्यस्त रहंदे है ता थोड़ा जा समय क्यों ना हां भगवान दे भजन कीर्तन ताई निकालिए ता चला भी बिल्कुल शुरुआत करनी इस लोक भजन ने सोगी आवा सुन देना

0: जी बिल्कुल, लिखा भी बोलते ना, जो हृदय किसी कमा रिंदा, जिस जे से भगवान का नाव नहीं होए, ध्यान नहीं होए, कने वो जीव भी किसी कमा दी नहीं जिए भगवान का नाव तिस जुबान पर जे नहीं होए। तो हमेशा दिखा हम जो रखना चाहिए भगवान का ध्यान, भजन कीर्तन अपने मन च हमेशा बनाई ने रखा, है ना, सुख शांति का एहसास हों। तो बिल्कुल जी, भजन संध्या कार्यक्रम सुना दे इस वक्त तुसा आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से, एक छोटा जहा अंतराल कने उसके बाद अगला भजन सुनना।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
1: और ये मेरी गुड़िया के ना।
3: पर दादी,
2: हाँ,
3: आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जी भजन संध्या कार्यक्रम आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते इस वक्त तुसां सुणदे हन बई जीवन च सुख दुख चली दे रहिंदे कन्ने हर वक्त जिया भगवान दा नाम जरूर लेना चाहिदा सुख होए पाए दुख होए है ना कई बार एड़ा हुंदा कि दुख च तां हां ईश्वर जो जरूर याद करदे लेकिन जल सुख हुंदा तल यहाँ थोड़ा तीनों जो भुली जाते तो देखा बोलने ना कि अगर सुख च भी नाम जपगे ईश्वर जो याद रखगे और तिस अनुसार जैसे काम काज करगे तो अपने कर्मा के हिसाब ने जैसे तुसा जो सुख भी जरूर प्राप्त होना ही सुख च जैसे अहम सुख इं बनता रहे इस ताई भगवान जो कभी भूलना नहीं चाहिए या तिना का शुक्रिया का जैसे हमेशा अहम जो करते रहना चाहिए तो चलो जी हूँ कार्यक्रम का अगला भजन आओ सुन लेंदे हैं।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और लीजिए अब प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम यू मंच।

युवा साथियों नमस्कार। आज के युव मंच कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जी आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ प्रकाशा जी, जानकारियों के साथ और मनोरंजन के लिए खूबसूरत से गीतों के साथ बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं युव मंच कार्यक्रम लेकर। तो आज के इस कार्यक्रम में भी हम जानकारियाँ लेकर आए हैं। बात सबसे पहले हम आज करेंगे आर के नारायण के जीवन के बारे में। जी हाँ, आर के नारायण जो कि एक साहित्यकार थे, अंग्रेजी साहित्यकार थे और उनकी आज है पुण्यतिथि। तो उनके जीवन के बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा करेंगे। अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक थे और उनकी जो कहानियां अक्सर परंपरा और आधुनिकता के टकराव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारतीय पारिवारिक जीवन की गतिशीलता जैसे विषयों को उजागर करती है। जी उनकी शैली की बात करें तो बहुत ही सौम्य हास्य, सौम्य व्यंग्य और सरलता झलकती थी उनकी लेखन शैली में। अग्रणी भारतीय उपन्यासकारों मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ मिलकर आर के नारायण ने भारतीय साहित्य में उपन्यास को एक विधा के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। जहां आनंद ने सामाजिक यथार्थवाद पर ध्यान केंद्रित किया और राव ने अपनी रचनाओं में दार्शनिक गहराई का संचार किया, वहीं नारायण ने आम लोगों के जीवन को चित्रित करने के लिए सरल हास्यपूर्ण गद्य का प्रयोग किया। जी देखिए, उनके जो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की अगर बात करें तो अपनी

दादी द्वारा पाले पोसे गए रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी ने 1930 में मैसूर के महाराजा कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आर के नारायण उपनाम से लेखन कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, उनका जो पूरा नाम था वो रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था और उन्होंने जो है वो उनका जो उपनाम है वो है आर के नारायण। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया अपने लेखन कार्य में और एक जो उनके छोटे भाई थे आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने उनकी कई रचनाओं का चित्रण किया। जी और उन रचनाओं की बात करें तो उनमें शामिल थी रचनाएं स्वामी एंड फ्रेंड्स और द बैचलर ऑफ आर्ट्स मालगुडी डेज और द गाइड। और ये जो उनकी प्रमुख रचनाएं थी उनकी उन्होंने जो है उनके छोटे भाई ने उन रचनाओं का चित्रण किया। जी देखिए उनके लेखन करियर की बात करें और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उन्होंने 34 उपन्यास लिखे। उनका पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स स्कूली लड़कों के एक समूह के कारनामों का वर्णन करने वाला एक धारावाहिक उपन्यास है। ये उपन्यास नारायण के काल्पनिक शहर मालगुडी से पाठकों को परिचित कराता है और औपनिवेशिक भारत में बचपन की खुशियों और कठिनाइयों को दर्शाता है। जी और ये जो उपन्यास है अंग्रेजी उपन्यासकार ग्राहम ग्रीन की मदद से प्रकाशित हुआ था जो नारायण के करीबी साहित्यिक गुरु और ब्रिटेन में उनके कार्यों के समर्थक थे। मालगुडी जहां नारायण ने अपने अधिकांश उपन्यासों की जो है पृष्ठभूमि रखी भारतीय साहित्यिक इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गया। पाठकों को ऐसा लगता था मानो वे शहर को जानते हों। ये उनके बचपन के मद्रास और उनके बाद के जीवन के मैसूर से काफ़ी मिलता जुलता था। जी हाँ, मालगुडी डेज। और देखिए हम सब ने सुना ये है ये नाम और बचपन में हम सब ने इस उपन्यास को जो है वो टीवी पर एक धारावाहिक के रूप में भी ज़रूर देखा होगा जिसमें सीधे साधे गांव की कहानी के रूप में जो है हम जुड़ते हैं, है ना। तो ये उनकी ही रचना थी बैचलर ऑफ आर्ट्स एक अर्थ आत्मकथात्मक उपन्यास है जो युवक के जीवन का वर्णन करता है जिसमें वह शिक्षा पारिवारिक अपेक्षाओं और प्रेम के बीच संघर्ष करता है। जी तो देखिए उनकी और भी रचनाएं हैं। उनकी बात करें तो वेटिंग फॉर द महात्मा जो कि 1955 में उनकी एक रचना आई थी, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स ये जो उनकी रचना थी वो आई थी 1967 में, और ए टाइगर फॉर मालगुडी जो है 1983 में आई थी वो इसमें शामिल हैं। उन्होंने कई लघु कथाएं भी लिखी और इनमें जो है लॉली रोड, ए हॉर्स एंड टू गोट्स एंड अदर स्टोरीज, अंडर द वन्यान ट्री एंड अदर स्टोरीज और द ग्रैंड मदर्स टेल जैसे संग्रह जो है इसमें शामिल हैं। उनकी रचनाओं में ये सारे संग्रह शामिल हैं। जी तो ये सारी रचनाएं जो है वो उन्होंने लिखी। उन्होंने दो भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत के संक्षिप्त आधुनिक गद्य संस्करण भी क्रमशः 1972 और 1978 में इन्हीं शीर्षकों को प्रकाशित किए।

और फिल्म और टेलीविजन में उनके जो उनकी रचनाएं थी उनको भी रूपांतरण किया गया। 1965 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता विजय आनंद द्वारा द गाइड का फिल्म रूपांतरण जो है निर्देशित किया गया था। इसमें बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता देवानंद और प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अभिनय किया था। और ये जो फिल्म है भारतीय सिनेमा में एक क्लासिक बन गई और उपन्यास के जटिल विषयों के चित्रण के लिए इसे व्यापक प्रशंसा मिली थी। जी हाँ, द गाइड फिल्म, और हम सब इस फिल्म के गीत बड़े चाव के साथ सुनते हैं और इसकी कहानी भी बहुत ही खूबसूरत है, जो कि इस द गाइड जो उपन्यास लिखा गया उसी से प्रेरित है। और इसका एक रूपांतरण है, फिल्म रूपांतरण है, जो कि इनके द्वारा लिखी गई थी। जी, और नारायण की कहानियों ने भौगोलिक सीमाओं को पार किया और अनेक भाषाओं में अनुवादित हुई उनकी कहानियां, जिससे वे विश्व स्तर पर एक प्रिय लेखक के रूप में स्थापित हुए। भारतीय साहित्य में उनकी विरासत अत्यंत गहन है।

0: और इनकी रचनाओं के बारे में हमने आपसे बात की कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी, तो इनके जीवन के बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा की। और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक गीत। इस गीत के पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

युव मंच कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। युवा साथियों, अब हम बात करते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको शौक है लेखन का तो आप भी एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं। बिल्कुल जी, आप में ये लगन होनी चाहिए कि हमें इस क्षेत्र में कुछ करना है। इसके लिए भी काफ़ी अच्छे विकल्प हैं जिसमें आप जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में करियर बनाना उन युवाओं

के लिए एक शानदार विकल्प है जो रचनात्मक है, भाषा पर जिनकी अच्छी पकड़ है और कहानियों या विचारों के माध्यम से समाज से जुड़ना चाहते हैं। जी हाँ, और आज के समय की अगर हम बात करें तो साहित्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल और मीडिया के माध्यम से इसके करियर विकल्प जो हैं काफ़ी व्यापक हो चुके हैं। जी हाँ, शिक्षा और कौशल विकास की अगर हम बात करें तो देखिए, एक अच्छी डिग्री अगर आपके पास हो हिंदी या अंग्रेजी साहित्य की, जिसमें कि आप जिसने पढ़ाई की हो, तो वो आप सबसे पहले एक उचित डिग्री प्राप्त करें और उसके बाद जो है वो इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आप सिर्फ आप में गुण होने चाहिए कुछ, जिसमें कि आप एक रचनात्मक सोच रखते हों, किस तरह से हम अपनी एक रचनात्मकता के माध्यम से कहानियाँ या उपन्यास जो है वो लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो रचनात्मकता होना बहुत ज़रूरी है। कहानी, कविता या स्क्रिप्ट राइटिंग के विशेष कोर्स आप कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, भाषा पर पकड़ के हमने बात की है कि आपकी जो भाषा है हिंदी या अंग्रेजी, उसके व्याकरण और शब्द कोश पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शब्द कोश को जो है वो काफ़ी मजबूत बनाएं। जी, और एक अच्छा लेखक बनने के लिए बहुत अधिक पढ़ना आवश्यक होता है। पठन पाठन की जो एक प्रक्रिया है उसे हमेशा अपनाएं ताकि आप एक अच्छे लेखक बन सकें। जी, और देखिए, साहित्य के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए रचनात्मकता, धैर्य और जैसे कि कहा कि भाषा जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पढ़ने और लिखने का शौक जो है ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है वो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आपको है शौक लेखन का तो आप ये ज़रूर आजमाएं और आप जो है वो इसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में।

जी देखिए, साहित्य के क्षेत्र में अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे, तो आप जो हैं वो पत्रकारिता और मीडिया के माध्यम से लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में डिग्री लेकर पत्रकार, समाचार संपादक, एंकर या रिपोर्टर के रूप में जो है आप काम कर सकते हैं। एक ट्रांसलेटर के रूप में भी आप जो है वो काम कर सकते हैं। आजकल के समय की अगर बात करें तो अनुवादकों की काफ़ी मांग रहती है हर क्षेत्र में। पब्लिशिंग हाउस में कंटेंट एडिटर बन सकते हैं आप, और संपादकीय सहायक के रूप में भी कार्य किया जा सकता है। जी, और कुछ बातें हैं जो आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, जिसमें कि व्यापक अध्ययन की बात करें, अच्छी हिंदी और साहित्य का ज्ञान बढ़ाने के लिए निरंतर आप पढ़ें। जी, और नेटवर्किंग की बात करें तो साहित्यकारों, प्रकाशकों और लेखन सेमिनारों में शामिल होकर संपर्क बढ़ा सकते हैं आप और इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। जी, अपना खुद का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया का उपयोग अपनी रचनाओं को साझा करने के लिए आप कर सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में सफलता के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास बहुत आवश्यक है। जी, तो देखिए, आजकल के युग में, डिजिटल युग में आप किस तरह से अपना लेखन कार्य कर सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में, इसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा की। और अब चलिए, कार्यक्रम में वक्त है तो एक और गीत आइए सुनते हैं।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:59 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान पर लोकभवन शिमला को ईंधन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज बताया कि लोकभवन शिमला में प्रत्येक रविवार को पेट्रोल फ्री संडे के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत रविवार के दिन कोई भी सरकारी वाहन ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। रविवार को निर्धारित सभी सरकारी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सामूहिक यात्रा व्यवस्था के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले के वाहनों को तत्काल प्रभाव से आधा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की समाप्ति और वैश्विक ईंधन की कीमतों के स्थिर आने तक वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। राज्यपाल ने सभी संबंधित कुलपतियों से प्रदेश के विश्वविद्यालय परिसरों में तत्काल प्रभाव से ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को संस्थागत रूप से अपनाने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉ सिकंदर कुमार, सुरेश कश्यप व डॉ राजीव भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एकजुट होकर बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों को लेकर लोग उत्साहित हैं और मंडी नगर निगम चुनाव में भाजपा इस बार प्रचंड जीत हासिल करेगी।
2: नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बहुत गर्मजोशी के साथ लोग जो है वो उत्साह के साथ राजनीतिक रैलियों में, कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था हम 15 में से 11 सीटें यहाँ पर मंडी में जीते और अब की बार ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि पूरे देश भर में एक वातावरण, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कार्यकर्ता उत्साहित है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
0: उधर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मंडी में नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन में चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए 17 मई को होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नाहन के एसडीएम राजीव सांख्यान ने बताया कि आज मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी जानकारी दी गई।
3: 17 मई को डीएमसी नाहन के इलेक्शंस हैं, तो इस बारे में जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, फर्स्ट रिहर्सल इनकी 27 अप्रैल को की गई थी, तो आज 13 मई को इनकी सेकंड रिहर्सल कराई गई और साथ में हमने ईवीएम रखे जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हमारी पोलिंग पार्टीज कर रही है। इस ट्रेनिंग में हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी पार्टीज को कराई है और इनको डिटेल में कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं, ईवीएम्स को लेकर उन्हें क्या प्रिकॉशंस रखनी है, पोलिंग बूथ

0: पे जाके उन्होंने क्या अरेंजमेंट करने हैं, सीक्रेसी ऑफ वोट कैसे मेंटेन करना है, इन सारी बातों पे जो है वो विस्तृत ट्रेनिंग दी गई।
1: उधर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों ने वेतन मिलने के बाद आज अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि निगम की चालक व परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर हर महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो 2 तारीख से वे अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 और 40 सेकंड हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

सफर सुहाने, गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रकाशा का प्यार भरा नमस्कार। शाम का ये वक्त थोड़ा सुकून, थोड़ा अपनापन और ढेर सारी बातें अपनों के साथ। जी हाँ, और ऐसे में अगर साथ हो संगीत का, नए पुराने गीतों का, तो फिर बात ही क्या है। तो चलिए आज की इस शाम को भी हम खूबसूरत बनाते हैं गीतों के साथ और भी सुरमई बनाते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: जी बिल्कुल, ये यादों का मेला, अपनों के साथ बातों का मेला हमेशा यूं ही बना रहे, चलता रहे, यही दुआ हम करते हैं। और ये जो खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़ में था, राजपूत फिल्म से इसे हमने लिया था। और चलिए अब कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, उसके बाद अगला गीत सुनते हैं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने के लिए कुछ पल चुराने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां तो कभी खत्म नहीं होती। जी बिल्कुल, ऐसे पल जो आपको खुशी दें, सुकून दें, ऐसे पल अगर मिल जाएं तो उन्हें जी भर के जी लें। जी हाँ, और कोशिश हमारी यही रहती है आकाशवाणी हमीरपुर पर आपको खूबसूरत से गीतों के साथ ये सुकून के पल जरूर दें। तो चलिए, आपके लिए अगला गीत बिल्कुल तैयार है, आइए सुनते हैं।

0: जी बिल्कुल, प्यार एक जादू की तरह ही तो है, सिर्फ एक शब्द नहीं है प्यार, ये तो मन की वीणा से निकला वो मधुर संगीत है जो बिना बोले भी दिलों तक पहुंच जाता है। ये वो जादू है जो थके हुए चेहरे पर मुस्कान सजा देता है, सुनी राहों में भी उम्मीदों के दीप जला देता है। दोस्तों, प्यार की कोई भाषा नहीं होती, फिर भी हर दिल इसे समझ लेता है। ये खूबसूरत संगीत अभी आपने सुना अलवेला फिल्म से, इसे हमने लिया था। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। सफर सुहाने गाने ने पुराने कार्यक्रम सुन रहे हैं आप इस वक्त आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद कार्यक्रम का अगला गीत।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

सफर सुहाने गाने ने पुराने कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गीत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: जीतू भाई, ओ जीतू भाई, भाई
1: हाँ
0: बड़ा भारी भार चुके आई ने मुंडुए डल भरी ने कन्ने चलाई री। इस बेला कुती चली रहा भी आया है।
1: हाँ जी हाँ जी। देख देख आंगन ते लगी रे अक्का पाने जड़ा नहीं पे डल्ला ले लूं अगे जे है।
0: ओ ना ना भाई, ते डल चलाई री अपने घर जो मैं कछु रखी लेनी है थी।
1: हाँ वो मैं ये तुम्हारी आई है थल्ले बड़के पट रहा लसन ना तो
0: हाँ
1: मैं ताया कणका टक्की कैसे सीजी गई रही 3-4 दिन पहले पे रहा। देख तूफान बड़ा रही
0: ओ तूफान नारी ता तू गाल ली मत गलांदा। चल आहे ता ओ ये रे हे बेले बगते परे बखाले इने जे ऐसे 2-3 दिन लाई ने कन्ने कणका सारिया सुखाई कने फेरी जे ऐसे कट्ठी करी ने रखी आए। ट्रैक्टर आले बोलिया बे काल आना मैं थ्रेशरा ले ने कन्ने
1: अच्छा
0: कने फेरी काल गाणी तुम्हारी गाण टक्की आए त्रपाला ने राती जो पया तूफान कने सारी कणक जे इसे उड़ी गई। त्रपाल भी नरे उड़ी गए भी है ना
1: अच्छा
0: कने सारी कणक सिज्जी गई भी आई।
1: देख पड़ोसियों की कहानी आदि पूरी है ना कने यहां दी भी कणक उड़ी त्रिपाल भी उड़िया सौगी कणक करी से पूलियां बिखरी गई। देख गड्यार लगाई रही रही थी तो थोड़ी सी ना लास्ट गाण थी उसे
0: हाँ
1: भी सीजी गई पाई त्रिपाल गए उड़ी थोड़ी बहुत से पूलियां भी उड़ी गई। फिर से हूं पूलियां पूलियां करी ने फिर इसको आई मैं तो अज सुकी तो हूं कर लाऊंगा थ्रेसर ताले गाई लेंगा फिर।
0: हाँ भाई जीतू
1: हाँ
0: भाई ये काम बदी गया भी है
1: हाँ
0: कने आजकल ना मौसम दे आई करदा पर तू डल्ला ता रखी दे
1: तो
0: थल्ले।
1: मैं भी सही देखा भी देख तरवार ही नहीं कने पड़ोसियों का ज्यादा ध्यान रखी रही आए।
0: ओ भाई अड पड़ोस सारा ध्यान
1: हाँ
0: रखना पौंदा।
1: ये देखे लसन बड़ा छियाल हो रहा ना ये देखे बड़ा
0: हाँ
1: छियालियां मोटा मोटा हो रहा है बाहरा भी लग जाया था यानी।
0: चल अच्छा कित्या भी
1: हाँ
0: है नहीं तो तीनों जो फेरी मता हो जाना हाले आने तो आधा तू ले आया भार ना ऊ थोड़ा ही रह आऊंगा है ना।
1: भाई देख मौसम रहा नहीं पता लगता भी पटने में ही रहा ना ने मौसम अजकल देखे ये देखते देखते एकदम खराब हो जाता है यार ना
0: हाँ
1: है
0: ये तो
1: ना।
0: ठीक गलाया भी है ना। आजकल मौसम का नहीं पता लगता भी है। घड़िए जे है धुप्पा लगा दा घड़िए जे ऐसे झख नेरी आई आंदी घड़िए बरखा लगी पौंदी भी है।
1: आओ आओ पे देखो ना 1-2 दिन ते उमस हो ही रही है ना ते गर्मी भी लगा रही है। देख तापमान नारी गल करू ता देख तमरे यार देख 33 डिग्री सेल्सियस पे
0: हाँ
1: तापमान पहले कुछ दिन पहले गिरी गिरा था ठीक है ना ठंड लगा रही ही फिर हुन थोड़ी गर्मी हो गिरी कने न्यूनतम जे ऐसे 22 डिग्री सेल्सियस रहा करना।
0: कने पाई मौसम विभाग री आली थी भी ये जानकारी मिल रही कि आने आले 2-3 दिन मौसम दे बनी रहना ना ता जेडी भी फसला हुई तीना जो जे ऐसे अच्छे तरीके ने करने हाँ सुखाना पर पहले मौसम का रुख मिजाज दिखी लेना भी है।
1: और पे देखो हूं की खाता फसलां जो ऐसे होना हाँ अंदर खा कर रहे हैं दाने जो तो हूं देख से गाई भी ली है ना फिर सुकवानी भी धुप भी लानी फिर कई बार देख अनाज हो ना पेतियां बरखा एकदम पवा रही हूं धुप लवाना भी जरूरी है ना
0: और
1: है ना। पेतियां एक नमी आरा उच्च स्तर जो ऐसे तियां बिल्कुल दियां बोलते ना बैलेंस रहा हर चीज ताए
0: हाँ
1: जो ऐसे हाथ यार भंडारण करना ही। हाँ
0: जे अगर नमी ज्यादा रहेंगी ना कणका च तो फिर खराब होने रह जे ऐसे डर बनी रहा भी है तो भाई सही तरीके ने करने सुखानी काली नहीं करनी है दे नहीं दिखना पे बरखा आएगी तो सिन्नी सुक्की जे इसे रखी थी भी है टांकी पर पाई ने करने फिर क्या होता फेरी बरसाती जे ऐसे कणका बमी आंदी भी है। पर दे ना जीतू भाई पे गल्ला पे रही आऊ भी ना कने दे नहीं पूछया भाई पानी ले आंदी पीने जो।
1: मैं गल लेड़ी ना देख भारत है अल्ले अल्ले फेरी गर्मी कने शरीर आ गर्म तो पानी पींदे जर ठहर जे ने तो वही गलाई बोली ले फिर तो शरीर भी ठंडी जाना यार।
0: तगलाने बोलने ते मिंजो याद आया ना आहे तेरे यहाँ खेतरा दिखा दे हे बे दिख 3-4 साल ते ते खेतरा बीच जे ऐसे पॉपुलर रे बूटे भी लगाई रे अखरोट भी लगाई रे ते त्याड़ी आहे सोचन बे ये मुंडू करना क्या लगी रहा भी है या इस हिसाबे ते इस दे खेतर जे ऐसे खराब हो जाने फसला ते जे ऐसे पुआजा नहीं मिलना पर आहे दिखा दे हे की बारी तेरे कणकारियां खेतरा भी कणक भी बदिया तेरी कने सहजे ते रुख डाल लगाई रे भी है सह भी खरे चली रे भी है।
1: वो तो मैं ये देख भाई लाभकारी जो काम करना चाहिए यार पे देख मैं क्या कितना भाई पॉपुलर करने या अखरोटा रे पेड़ लगाए ने जैसे फसल रहा मिश्रण करने रहा रखी रहा काम।
0: अच्छा।

0: जे लोक गीत हुंदे ना जीतू भाई पे पूरा दिन कितना भी काम कीती रहो लोक गीता सुनी ने कन्ने सारी थकावट जे इसे छू मंत्र होई आंदी भी आई
1: आहो कने पे देख मी लोक गीता च गल होया करे ही मेलियां दी
0: हां
1: हुन देख फसलां खते बेले होई है ना की खते कने हुन दुए पासे मेलियां दा टाइम होना शुरू
0: जगह जगह जे ऐसे मेले लगदे भी आए त भई आहा जो जे ऐसे मेलियां च भी जाना चाहिंदा जेड़े आहा दे तीर्थ त्योहार ए सब भी मनाने चाहिंदे ताही आहे अपनी संस्कृति ने कन्ने जे ऐसे जुड़ी रे रहंदे कने इस जो जे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी अगे बधाई सकदे भी आए
1: बिल्कुल कने पे देख मैं देखा करा हां पे अजकले माला राजे ऐसे थोड़ा जे पालने रा तौर तरीका बदली गिरा तुम्हारा ना कने अजकले क्या क्या माल रखे रा भला कने किड़े किड़े पशु रखे रे भला हुन
0: गल दे ही ना जीतू भाई भई आजकल जे ऐसे मैं दुधारू पशु रखी रे भी है
1: अच्छा
0: तब दूध दा जे ऐसे काम शुरू कीती रा भी है ना कने तुआ जो पता भई इस्ते जे ऐसे है आमदनी भी कमाई सकदे कने अच्छी नस्ल रा पशु रखी रहूंगा तो इस्ते दुग्ध उत्पादन भी खरा मिलदा भी है
1: हां भाई देख जिया पशु पालना है भाई सावधानी भी रखना।

0: भी है ना, तो जी यहाँ तीना क्या करना पे प्यागा जे है पशु है नी दूना कन सन जहाँ दूना जाना तो ताली यहाँ दिखना भी पशु है तो दूध भी खरा दित्या लियाटू भी खरा फूली जा भी है ना कने दिखी ने कन्ने खुश हो यांदे कने एक बारी दूई ने कन्ने पशुआ जो ले आंदे भी है
1: कने कई बारी तीना जी बोल देने पे कोई चीज बेचनी होती तो बड़े चमकाई चमकाई करना तो दिया सिंगा री गाल करो पे सिंगा पर छले हुए दंद हुए तो पे बिल्कुल यहाँ तीना सफाई रखनी तिथत जो उम्र अंदाजा लगा से भी तीना मटाने की कोशिश कर रहा
0: है। हाँ तो दे यानी अभी एक ही बारी यह चीज आई ने करने जे है पशु वहां खरीदी लेना भी है दो तीन बारी जे ऐसे लगातार हाँ जाई ने करने पशु दूना ताकि यहाँ जो पता लगो भी पशु दा जेड़ा दूध दा से कितना भी है या
1: करन टाइम टाइम पर पई देखो टीकाकरण स्वास्थ्य री जांच है ना से हाँ बिल्कुल टाइम पर कराना या
0: बिल्कुल ठीक है। ता जी तू भाई गल्ला बाता हाँ बतेरियां कीतियां ना पर लोक गीत लग रहे इसे सुनी लेंदे फिर
1: हाँ लोक गीत भी सुनी लेना कने एड़ा पे बड़ी पर देर होगी इसके बाद मैं चली भी पौना घर जो लोक गीत सुनते सुनते तालियां लोक गीत मुकना मैं घर भी पहुंची जाना
0: ठीक
1: है ना ठीक है।

0: किसान कने बागवान भाई बहनों हुण आहा देनी हमीरपुर सब्जी मंडी ते प्राप्त सब्जियां कने फलां दे थोक भाव दी जानकारी। ता आलू रहे 8-12 रुपये प्रति किलो, पहाड़ी आलू रहा 14-16 रुपये प्रति किलो, प्याज रहा 20-22 रुपये, गोभी रही 30-35 रुपये, बंद गोभी रही 13-15 रुपये प्रति किलो, घीया रहा 15-16 रुपये प्रति किलो, भिंडी रही 25-30 रुपये प्रति किलो, करेला 18-20, टमाटर रहे 14-15 रुपये प्रति किलो, राम तोरी रही 40 रुपये प्रति किलो, हरी मिर्चा रही 40-50 रुपये प्रति किलो, नींबू रहे 80-90 रुपये प्रति किलो, खीरा रहा 16-30 रुपये प्रति किलो, बैंगन रहे 20-25 रुपये प्रति किलो, अदरक रहा 140 रुपये प्रति किलो, लसन रहा 140-150 रुपये प्रति किलो, फ्रांस बीन रही 60-70 रुपये प्रति किलो, सेब रहा 140-160 रुपये प्रति किलो, केला रहा 450-500 रुपये रा प्रति डब्बा, मौसमी रही 75 रुपये प्रति किलो, कीवी रहा 1100-1200 रुपये रा प्रति डब्बा, अमरूद रहे 90 रुपये प्रति किलो, तरबूज रहा 16-20 रुपये प्रति किलो, खरबूजा रहा 25-35 रुपये प्रति किलो, अंगूर रहे 150-160 रुपये प्रति किलो, आंब रहे 65-70 रुपये प्रति किलो, मशरूम रहे 30-40 रुपये रा पैकेट। ता किसान कने बागवान भाई बहनों ए थी हबीरपुर सब्जी मंडी ते प्राप्त सब्जियां कने फलां दे थोक भाव दी जानकारी। इसी ते सौकी लैंदे आया अनुमति, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी आकाशवाणी का। ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:05 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत। आइए इसके अंतर्गत सुनते हैं।

0: जी, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में ये भक्ति रचना भी आपने सुनी सौदागर फिल्म से। भक्ति संगीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: जी, इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भक्ति संगीत में। जी आइए अब सुनते हैं आरजू फिल्म से ये भक्ति रचना।

0: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

जी, अंकुश फिल्म की इसी भक्ति रचना के साथ आज का ये कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर, और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनक गराइंदियां।

जी रौनका कराई दिया कार्यक्रम सुनने वाले जो मेरा यानी प्रकाशां दा प्यार भरा नमस्कार जी बई तुसा दिखा कार्यक्रम दी नियाल जरूर कर दे उड़े रौनका कराई दिया कार्यक्रम च बिल्कुल हां हाजिर हो चुके जी छैल छैल गल्लां बातां करनी सौगी सौगी अज हां हर रोज तरह जे असे लोक गीत भी सुनने कार्यक्रम दी रौनका तो ताई लगदी है जाली जे लोक गीत भी गल्लां बातां ने सौगी सौगी हुन है ना तो भाई दिखा शुरुआत करी चुके असे इस जेड़ी धुन है तिसने सौगी कने हुन गल्लबात करनी असा अज दे इस कार्यक्रम च असा गल्लबात करनी कि अहारे जेड़े घरा दे बड़े बुजुर्ग से अहां कियां तिन्हां ध्यान जी असर रखी सकदे हन कियां खुशहाल है रही सकदे हन इहदे बारे च जे अहां गल्लबात करनी अज मैं दिखा अहां सारे चाहते न कि परिवार च खुशियां बनदी रहन अहारा समाज ताई खुशहाल होई सकां जल्दी जहां दा परिवार जे असे सुखी होंगा कने सारे जे परिवार दे सदस्य असे ठीक ढंग ने होंगे बढ़िया एक दूजे ने दिन रा गलान बोलन है ना व्यवहार जैसे बढ़िया होगा और ये सारी चीज़ें जैसे हमारे हत्था ही होई चाहे करा दे बड़े उन बुजुर्ग उन या फिर बच्चे उन सारे एक तालमेल बैठाई ने अगर अहाँ चल गए ना तो घर जैसे बिल्कुल खुशहाल हुआ असा ना खुशियां ने भरीदा हुआ या कने भी दिखा सच किसी ने बोली दा वेड़ या भाई जिस परिवार से दिखी सकती ना कि जिथी जे परिवार दे बुजुर्ग कने बच्चे जे सह खुशहाल है खुश है तो है परिवार जैसे तिना दी रौनक जैसे कुछ हो रही होंगी तो परिवार दे सदस्यों दे चेहरे पर खुशियां जे है हमेशा बरकरार रही कने यही कोशिश अहां जो करना चाहिए कि अहां सारे जे है बिल्कुल मिली जुलने रहन दिखा ना अहारे बोले ना जी एक पीढ़ियों का अंतर जैसा तो हमेशा ही होंगे विचार की गल कर लीए तिच भी अंतर होंगे या बड़े कुछ अपने हिसाब ने सोचा दे हुए कने जेड़े जे घर के दूजे सदस्य ऐसे कुछ होर सोचा दे बुजुर्गों का सोचना कने अगली पीढ़ी का सोचना थोड़ा जि अंतर तो हुआ ही आ लेकिन अगर अहां इक्की दुए की गलबात जो समझी ने चल गए सुनी ने चल गए तो असें अंतर भी जो असें खत्म हुई है ना अगर मन गए इक्की दूजे की गल ता पर तो मनना बड़ा जरूरी होंगे कई बार दिखा हाँ दिखते कि बुजुर्ग जे से अपनी कोई गल बोलना चाहते लेकिन अहां ती जो सुनते ही नहीं दिन की गल जो तो दिखा ना सुनना चाहिए ये गल एड़ा नहीं है बेतिन गल जो हाँ अनसुना करिए क्या चाहते बुजुर्ग जे कि थोड़ा जहा समय जे असें अहां जो दिन जे अहां दे बच्चे जे है ना कई बार दिखा बोलते ना हाँ कि भी घर के बुजुर्ग ने बच्चे जे सही एक जे होंगे है गल सही लेकिन दिखा बुजुर्ग जे ना अगर तिना की गल जो सुने नहीं जा तो थोड़ा कई बार चिड़चिड़े भी हो जाते तो तिना जो तिना पर जो है ये नहीं सोचना कि अगर बुजुर्ग है तो यह कुछ बोला दे तिना पर गुस्सा करना है लगी पी ये बिल्कुल गलत गल होंगी है और है अजकल की कई बार पीढ़ी च एक कि अहम तिना लगता हमें बड़ा बारी कम है कहने अहम बड़े व्यस्त हाँ मतलब टाइम नहीं है भाई कोई भी गलबात करने का लेकिन टाइम बिल्कुल होंगे ही सह टाइम जो तुसा अपने मोबाइल पर जो सह देना मोबाइल जितना टाइम अपने बुजुर्गों को देिए अपने घर के बड़े जो देिए बैठी ने दिखना कदी दिखना कितनी सारी गल्ला सुख सीखने जो अहम जो मिली आनी है ना कने संस्कार जैसे अहम जो बुजुर्गों ही मिलते तो तिना जो सुना तिना की गलबात जो जैसे अहमियत दिया सह बड़ी जरूरी गल

0: जी जिया लाल ठाकुर दे गाई दे इसी लोक गीतां नी सौगी अज दा कार्यक्रम रौनकां कराईंदे इत्थी संपन्न हुंदा जी दिया इजाजत नमस्कार।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
5: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
4: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
5: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
6: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
7: इतनी भी क्या जल्दी थी।
6: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना,
7: और ये मेरी गुड़िया की ना।
8: तो दादी
6: हाँ
8: आपके नाम?
9: सब कुछ, मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
10: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या
9: RBI कहता है।
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन शिमला को घोषित किया ईंधन संरक्षण क्षेत्र। लोकभवन में कम होगा वाहनों का काफिला। रविवार को सरकारी गाड़ियों पर रहेगी रोक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पेंशनरों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर लगाई रोक। सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। भाजपा ने मंडी नगर निगम चुनाव के लिए

0: संकल्प पत्र किया जारी और बारालाचा लादर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए खुला, पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान पर लोक भवन शिमला को ईंधन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज बताया कि लोक भवन शिमला में प्रत्येक रविवार को पेट्रोल फ्री संडे के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत रविवार के दिन कोई भी सरकारी वाहन ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। रविवार को निर्धारित सभी सरकारी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सामूहिक यात्रा व्यवस्था के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले के वाहनों को तत्काल प्रभाव से आधा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की समाप्ति और वैश्विक ईंधन की कीमतों के स्थिर आने तक वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। राज्यपाल ने सभी संबंधित कुलपतियों से प्रदेश के विश्वविद्यालय परिसरों में तत्काल प्रभाव से ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को संस्थागत रूप से अपनाने का आह्वान किया है। कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से कार पूलिंग अपनाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, पैदल चलने व साइकिल चलाने को बढ़ावा देने की अपील की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के विकास में पेंशनरों और कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वे आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों को चार दिन के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों को भी चार दिन में निपटाने के लिए कहा गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति में ओपीएस के लाभ जारी रखेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल इकाई द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। इस बीच अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल इकाई ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है।
1: अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने हिमाचल प्रदेश के महिला हितों को ध्यान में रखते हुए कमला नेहरू अस्पताल की शिफ्टिंग को लेकर के और जो सरकार ने जो गायनी की ओपीडी आईजीएमसी के लिए शिफ्ट की है उसको ध्यान में रखते हुए और महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में हम लोगों ने पीआईएल की थी, जिसमें आज पूरी तरह से माननीय न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जो फैसला है माननीय हाई कोर्ट का, इसका स्वागत करती है और महिलाओं के हित में जो हम लोगों ने पिछले एक महीने से लेकर के जो आंदोलन किए हैं ये आज उसकी जीत है।
0: कर्नाटक के मैसूर में आयोजित विधानमंडल निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के एक समान मॉडल विषय पर आधारित बैठक आज संपन्न हो गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बैठक में हिस्सा लिया और बताया कि बेहद महत्वपूर्ण विषय पर गहन व विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये समिति दो महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय को सौंपेगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि यदि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में संसदीय प्रणाली के कार्य संचालन में एकरूपता आ जाए तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने विधानमंडलों में चलने वाली संसदीय नियमावली पर प्रकाश डाला और इसकी देशभर में एकरूपता की जोरदार पैरवी की। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने वेतन मिलने के बाद आज अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि निगम की चालक व परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर हर महीने की एक तारीख को कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो दो तारीख से वे अपनी सेवाएं नहीं देंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है।

0: भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉ सिकंदर कुमार, सुरेश कश्यप व डॉ राजीव भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एकजुट होकर बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों को लेकर लोग उत्साहित हैं और मंडी नगर निगम चुनाव में भाजपा इस बार प्रचंड जीत हासिल करेगी।
1: नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बहुत गर्मजोशी के साथ लोग जो है वो उत्साह के साथ राजनीतिक रैलियों में, कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, हम 15 में से 11 सीटें यहाँ पर मंडी में जीते और अब की बार ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि पूरे देश भर में एक वातावरण, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कार्यकर्ता उत्साहित है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
0: उधर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मंडी में नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज मंडी नगर निगम के तहत टारना, नीला और अन्य स्थानों पर चुनाव अभियान तेज करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मंडी में जनता पर नगर निगम थोपा और पूर्व जयराम सरकार ने केवल सराज क्षेत्र का विकास ही किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन में चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विश्वास जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम सोलन के लिए जो बजट की कोई कमी भी जो है नहीं आने दी जाएगी और जो भविष्य की जो योजनाएं हैं और जो भी वार्ड की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के बड़े योग्य उम्मीदवारों को उतारा गया है। और मैं नगर निगम सोलन प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील भी करता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके उन्हें जिताएं।
0: मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा नेता व विधायक अनिल शर्मा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य मंडी को आधुनिक, सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटन की दृष्टि से विकसित शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों में मंडी नगर निगम के विकास की ठोस कार्य योजना है। करीब 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित बारालाचा ला दर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी इकाई के संयुक्त प्रयासों से इस महत्वपूर्ण मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया है। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने बताया कि अगले 3 दिन तक यदि मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य रही तो इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के खुलने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
3: डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौल स्पीति एंड बीआरओ के 70 आरसीसी के लगातार एफर्ट से हमने 12 लच्छाला खोल दिया है जो कि 16,000 से ऊपर की फीट पे है और ये लोगों की सुविधा के लिए हमने खोला है। इससे ले हमसे कनेक्टेड हो चुका है। अभी ट्रायल चल रहा है तो अभी 3 दिन के लिए सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल हम अलाउ करेंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स और जैसे ही इसको सेफ पाया जाएगा तो हम हैवी व्हीकल भी इसमें अलाउ कर देंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन शिमला को घोषित किया ईंधन संरक्षण क्षेत्र। लोकभवन में कम होगा वाहनों का काफिला। रविवार को सरकारी गाड़ियों पर रहेगी रोक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा पेंशनरों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर लगाई रोक। सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। भाजपा ने मंडी नगर निगम चुनाव के लिए संकल्प पत्र किया जारी और बारालाचा ला दर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए खुला। पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: मीडियम वेव और

0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
1: और ये
3: मेरी गुड़िया के
4: नाम। दादी
2: हाँ?
4: आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
7: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
9: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
7: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
9: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
7: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
10: डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
11: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
12: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
13: बिल हो रहा है।
12: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
14: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के
4: नाम। दादी
0: हाँ
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: दादी
0: हाँ
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
8: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
10: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
8: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
10: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
8: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
11: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
12: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
13: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
14: कार्यक्रम आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आज सुनिए झलकी। ना बाबा ना। लेखक है संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक।
1: कौन है?

0: अरे कौन है भाई?
1: क्या है जी, कौन है? मुझे तो डर लग रहा है।
0: अरे बिल्ली होगी, सो जाओ।
1: नहीं जी, एक बार उठ के देख तो लो, तुम डर तो नहीं रहे?
0: तुम भी क्या बात करती हो, मैं भी कहीं डरता हूं, देखता हूं। अरे
1: क्या हुआ?
0: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था ना बिल्ली होगी, वही थी।
1: तो इसमें चीखने की कौन सी बात थी, डर गए क्या?
0: अरे नहीं, वो अचानक कूदी ना तो चीख निकल गई।
1: मैं तो कहती हूँ जी, मुझे तो बहुत डर लगता है।
0: तुम्हें डरने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही।
1: वो बात नहीं, यूं भी दिन में तुम ऑफिस चले जाते हो, पीछे मैं अकेली रह जाती हूँ, शाम को भी कभी कभी देर से आते हो, ऐसे में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ।
0: तो मैं क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना।
1: वो बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो पड़ोस वाली मिसेस सिंह है ना, कितने चैन से रहती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, चाहे घर पर कोई हो या ना हो।
0: वो कैसे?
1: उनके पति ने जब से अल्सेशन कुत्ता पाला है, तब से वो सारा घर उसी कुत्ते के भरोसे छोड़कर चली जाती हैं।
0: अच्छा, ये बात है।
1: हाँ, और वो कुत्ता भी बहुत खतरनाक है, किसी अजनबी आदमी को तो घर के पास फटकने तक नहीं देता।
0: तो फिर मैं क्या करूं, तुम्हारा मतलब क्या है?
1: सुनो जी, एक कुत्ता पाल लेते हैं, एक अच्छा सा ला दो ना, मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी।
0: अच्छा बाबा, ला दूंगा, लेकिन इस वक्त तो सो जाओ, रात बहुत बीत चुकी है।
1: नहीं, पहले वादा करो कि तुम एक कुत्ता ले आओगे। कितना अच्छा होगा जब मैं भी मिसेस सिंह की तरह कहीं भी आ जा सकूंगी, कुत्ता घर की रखवाली करेगा। बोलो, लाओगे ना?
0: हाँ हाँ ले आऊंगा, अब तो सो जाओ वरना मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा।
1: ओके डार्लिंग, गुड नाइट। ओहो, मिसेस सिंह और मिसेस शर्मा, आइए आइए।
2: हेलो गीता, कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक, आइए आइए, अंदर आइए।
2: सुना है आपने बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता पाला है,
3: इसीलिए हमने सोचा चलो देखकर आते हैं।
2: और फिर हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है, पहचान जाएगा तो काटेगा भी नहीं।
3: हाय, मेरा तो बस 14 सुई से दिल घबराता है, बड़ा दर्द होता है।
2: अरे मिसेस शर्मा, अब जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है, अब तो कुत्ते को पहले ही एंटी रैबिक सुई लगवा दो तो फिर कुछ भी असर नहीं होता।
3: अरे भाई, काटने के बाद भी 14 सुई का क्या भरोसा, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं फिर तो आदमी भौंक भौंक कर दम तोड़ता है, पानी देखते ही काटने को दौड़ता है, और फिर हाइड्रोफोबिया।
1: अच्छा, कहाँ लगती है ये एंटी रैबिक सुई?
2: ये तो किसी भी पशु चिकित्सालय में लग सकती है,
3: इसीलिए मैं तो कुत्ता पालती ही नहीं, यूं भी जानवरों से मुझे बड़ी नफरत है। हमारे पति देवी बड़े बहादुर हैं, क्या मजाल कोई दरवाजे पर फटक जाए।
2: उनकी तो मुझे देखकर अच्छे अच्छों की घिघी बन जाती है।
3: हाँ, आपने सच ही कहा है मिसेस सिंह, उन्होंने तो मुझे कह रखा है कि रात को अगर लगे कि कोई चोर आया है तो बस कह देना, पहलवान जी वो अपना डंडा कहाँ रखा है, और बस चोर डर कर अपने आप ही भाग जाएगा।
1: मिसेस सिंह, आपके कुत्ते का नाम क्या है?
2: भाई दीवे, मेरा कुत्ता नहीं कुतिया है, कुत्ते से ज्यादा तेज होती है, उसका नाम लूसी है।
1: कितना प्यारा नाम है।
2: जानती हो गीता, मेरी कुतिया पर रोजाना 200 रुपए खर्च होते हैं, सवेरा होने से लेकर रात सोने तक उसकी देखभाल होती ही रहती है, अच्छे साबुन से नहलाना, बाल संवारना, परफ्यूम लगाना, बिस्किट दूध वगैरह वगैरह।
3: हाय मिसेस सिंह, कितनी खुशकिस्मत है आप, इतना प्यारा चौकीदार मिला है आपको।
2: और वफादार इतनी कि देखते ही तुम हिलाने लगती है।
3: मैंने तो जब भी अपने पति से कहा कि हमें भी ऐसा ही एक वफादार कुत्ता ला दो तो बस भड़क उठे, वैसे तो वो मेरा कहना बहुत मानते हैं।
2: अरे भी गीता, तुम्हारा कुत्ता है कहाँ, हम तो उसे देखने आए हैं।
1: अभी बुलाती हूँ। प्रीतम,
3: अरे हमने कुत्ता बुलाने को कहा है।
1: ये मेरे कुत्ते का ही नाम है भाई, और कोई नाम लेने पर वो सुनता ही नहीं, प्रीतम कहते ही दौड़ कर आता है। प्रीतम आजा, आओ आओ आओ।
3: आए हाय, कितना प्यारा कुत्ता है, बरसा सफेद।
1: जानती है आपकी डॉग शो में इसी नस्ल का कुत्ता फर्स्ट आया है।
3: वाह, आओ आजा आजा।
1: ऐसे नहीं प्रीतम, आओ आओ ना, आओ।
3: अरे वाह, इतना समझदार है,
2: बहुत प्यारा कुत्ता है।
3: अरे वाह, ये तो मेरी गोद में बैठ गया। आपके पास तो यूं बैठा है जैसे पहले की पहचान हो।
2: नहीं जी, जानवरों को प्यार से पुचकारो तो फिर वो दुम हिलाते ही रहते हैं।
3: आपको तो इस बात का बड़ा तजुर्बा है मिसेस सिंह।
2: अरे ये क्या, छी छी, इसने तो मेरी 1000 रुपए की साड़ी ही खराब कर दी।
3: बहुत ही बदबू है, बड़ा बेशर्म कुत्ता है। ये जानवर होते ही ऐसे हैं, जहाँ पाया वहीं गंदा कर दिया।
2: आज ही तो निकाली थी ये साड़ी, हाय अब मैं घर कैसे जाऊंगी।
4: ऐसा भी क्या है मिसेस सिंह, थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिए।
2: नहीं जी, पानी वानी क्या, अब तो घर जाकर ही साफ करूंगी। चलो भी मिसेस शर्मा।
0: ओफो, आज तो बहुत थक गया। सुनो, एक कप चाय तो पिला दो।
1: दूध नहीं है।
0: क्या कहा?
1: हाँ, अपना प्रीतम पी गया, उसके लिए भी तो चाहिए। और सुनो, तुम उसको अभी अस्पताल ले जाकर एंटी रेबिक सुई तो लगवा दो। जानते हो, किसी दिन उसका दांत भी लग गया तो आदमी भौंक भौंक कर मरेगा। और हाँ, एक अच्छा सा साबुन, कंघी, तौलिया, बिस्किट वगैरह डॉक्टर से पूछ कर ले आना। आते वक्त दूध भी ले आना, तभी चाय भी बनेगी।
0: गीता, इस वक्त मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं आराम करूंगा।
1: जाओ ना, सोचो किसी दिन उसका दांत हमें या तुम्हें लग गया तो। मिसेस सिंह कह रही थी, हाय भगवान कैसा ना करे।
0: मैं अब कहीं नहीं जा सकता, इतनी सारी फरमाइशें, अपने लिए तो कुछ हो नहीं पाता, ऊपर से कुत्ते का खर्चा।
1: तुम नहीं जाओगे?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: यही फर्क इंसान और जानवर में होता है। देखो हमारी अभी कितने दिनों की पहचान है, फिर भी कितने प्यार से दुम हिला रहा है।
5: टेलीग्राम
0: आया।
1: किसका है जी?
0: तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं।
1: हाय पापा, शादी के बाल पहली बार आ रहे हैं। ऐसा करो दूध ले आओ ना, पापा को तो हर पल चाय चाहिए।
0: मैं तो नहीं जाऊंगा, सारा घर बदबू से भरा पड़ा है, हर जगह इस कुत्ते ने गंदगी कर रखी है।
1: वो तो क्या है जी, मैं सफाई वाले के भरोसे रह गई, वो आज आई ही नहीं। खैर उसे मैं साफ कर दूंगी, तुम दूध ले आओ ना।
0: अच्छा बाबा जा रहा हूँ, मरता क्या ना करता, इनको भी आज ही आना था। हे भगवान, ये कुत्ता यहाँ रहा तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा।
1: हाय राम, बहुत थक गई, ये गंदगी साफ करते करते सिर चकरा गया। बदबू के कारण तो उल्टी सी लग रही है, अब तो कुछ करने को जी भी नहीं चाह रहा। लेकिन क्या करूं, पिताजी भी पहली बार आ रहे हैं।
0: हाँ। ये लो दूध, पहले मुझे चाय पिला दो।
1: अच्छा जी।
0: अरे ये कुत्ता,
1: अरे अरे देखो तो,
0: हट।
1: कौन है, क्या हुआ?
0: ये कुत्ता तो सर दर्द बन गया,
5: हट दूर।
0: अब पता नहीं क्या हुआ, कौन है?
5: अरे भाई मैं हूँ, अरे छुड़ाओ तो इस कुत्ते से।
1: पिताजी अजी जल्दी छुड़ाओ, वरना वरना काट खाएगा। हाय राम, खून लगता है काट खाया। हाय अब क्या होगा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुरंत जाकर सुई लगवा दो। काट लिया ना। हाय पिताजी, मेरे पिताजी पहली बार तो बेचारे आए थे। हाजी मिसेस सिंह कह रही थी कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर। हाय पानी देखते ही, हाय मुझसे तो कहा भी नहीं जाता, ये कुत्ता नहीं मौत का पैगाम है।
5: बेटी ये क्या कह रही है तू?
0: ये कह रही है ससुर जी कि कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर मरता है।
1: अब क्या होगा, अब तो आपको 14 सुई भी लगेगी। तुम डॉक्टर को बुलाओ जी।
5: डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर क्या?
1: पिताजी

0: आपको कुत्ते ने जो काट लिया है, ये खून।
1: अरे ये खून नहीं बेटी, ये तो दवा की शीशी थी जो फूट गई। कुत्ता मेरे ऊपर गिरा इसलिए फूट गई, अब सारे कपड़े भी खराब कर दिए।
0: तो इसने आपको काटा नहीं?
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं।
0: सुनो जी, तुम इस कुत्ते को अभी हटा दो।
2: लेकिन तुम जो अकेली रहती हो उसका क्या होगा?
0: ना बाबा ना, मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन ये सफाई, ये देखभाल मुझसे ना हो सकेगी। इसको अभी मेरी नजरों से दूर कर दो, दूर कर दो इसको।
3: अभी आपने झलकी सुनी ना बाबा ना, इसके लेखक थे संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक, और ये झलकी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

राघव चैतन्य की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे एक विलन रिटर्न्स फिल्म से। कुणाल वर्मा ने इसे लिखा, कौशिक और गुड्डू का संगीत।

कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केके और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत बचना ए हसीनो फिल्म का नाम है।

मोहित चौहान की आवाज में ये गीत फिल्म ऊंचाई से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: ये है विविध भारती।
1: श्रोता, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि की 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
3: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी।

0: 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल और 75 मिलियन टन्स कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री

0: इंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
2: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
3: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद

जी, प्यार वो जादू है दोस्तों जो खामोशियों को भी बोलना सिखा देता है, और जब दिल सच में किसी का हो जाए तो हर गीत अपनी कहानी सा लगने लगता है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चांदनी रातें अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: होल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने

0: आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपने कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।